नमस्कार। FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स

0: देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइड्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

चिंतन। रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि जो व्यक्ति दूसरों की बिना किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 310वां। संगीत सरिता कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर। आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर की स्वर साधना की अनुपम परंपरा, कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। ये आप किराना घराना का भाग 13वां सुनेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिए सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के कार्यक्रम का समय है 7:30 पर, समाचार सुबह 8 बजे। त्रिवेणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर और दोपहर 2 बजे। आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों से सजा कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात्रि 9:30 पर, जो केंद्रित है अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। आलेख स्वर रेणु बंसल का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में सुनिएगा गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुति तेजश्री कामले। दिन में 11 बजे विविधा के अंतर्गत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूपक हिंदी साहित्य कल और आज, सहभाग प्रियवंद यतेंद्र मिश्र, कैलेश वानखेड़े, मनोज रूपड़ा, विनीत कुमार, उर्मिला शिरीश, स्वर आलेख ममता सिंह, प्रस्तुति तेज श्री कामले, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। दोपहर 1 बजे सुरीला सफर, फेसबुक पेज पर कमेंट्स के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। 2:15 पर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे कार्यक्रम मनचाहे गीत, 3:30 पर कार्यक्रम होगा नाट्य तरंग, नाटक साबुन की टिकिया, साकी के लिखे नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण, रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिप्पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के फिल्मकार विमल राय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत, शाम 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6 बजकर समाचार हिंदी में, 6:05 पर तराने नए पुराने, 6:30 पर झरोका की रूपरेखा सुनिएगा, 6:35 पर संध्या रंजन चित्रपट संगीत और 7 बजे सुनिएगा विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल गुरजेंद्र सिंह सूरी की शौर्य गाथा, प्रस्तुति तेज श्री कामले, स्वर और आलेख मंजरी वर्मा का, संपादक सहयोग मनीषा सिंह। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज, क्लेरनेट मास्टर इब्राहिम चौधरी। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रसन्न राजेश और राकेश, लेखन वीएम आनंद, निर्देशन श्याम सुंदर। रात 8:15 पर चित्रलोक, 8:45 पर संध्या समाचार, रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 पर ढलती जाए रात,

भारती राष्ट्रीय यह वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली झड़कन श्री रामचरितमानस के भाग का 310वां आज आप सुन सकेंगे।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हाँ, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है। एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। हम

0: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में और डॉक्टर शकुंतला भरणे जी हमारे साथ हैं। शकुंतला जी, हाँ? के किराना घराने की गायकी को धैर्यपूर्ण गायकी क्यों कहा जाता है?
1: धैर्यपूर्ण गायकी इसलिए कहा जाता है कि विकास बिना, जल्दबाजी के बिना, क्रमशः और गहराई इसमें दिखाई जाती
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और इसकी गायकी श्रोता को एक शांति, एकाग्रता और आत्मिक आनंद लेने का अनुभव कराती है। इस घराने में राग का विस्तार जो है वो अत्यंत धैर्य, संयम और क्रमबद्धता से किया जाता है
0: जी।
1: बल्कि धीरे धीरे उसका स्वरूप विकसित किया जाता है। इसीलिए
0: हाँ।
1: राग के स्वर का अलग अलग ऊपर उभारते हुए
0: जी।
1: उसके आपसी संबंध और महत्व को स्पष्ट किया जाता है। इससे श्रोता राग के स्वरूप को सहजता के अनुभव कर पाता है। मंद्र सप्तक से मध्य और मध्य सप्तक से तार सप्तक भी एक एक क्रमशः बढ़ते हुए राग का विस्तार किया जाता है और इस क्रमिक विकास से राग की संपूर्ण छवि श्रोता के सामने स्पष्ट हो जाती है। और जहां कई घरानों में राग विस्तार के साथ एक लयकारी बोलबाट या तानों का प्रभाव अपेक्षा

0: धैर्यपूर्ण गायकी किराना घराने की जो है वो इस ख्याल को सुनकर के उस्ताद मशकूर रोहली खान साहब की आवाज में हमने सुना
1: बिल्कुल
0: पूरी तरह स्पष्ट हो गया। और इसे सुनते हुए ये भी लगा कि कौन कौन से गाने होंगे फिल्मों से जो इस राग पर चांदनी केदार पर आधारित होंगे।
1: चांदनी केदार तो बहुत कम लोग गाते हैं
0: जी जी,
1: और इस राग में मुझे लगता है डायरेक्ट चांदनी केदार में गाना मिलना मुश्किल है ना। केदार की छाया लेकर
0: जी
1: हम चांदनी केदार का आनंद उठाएंगे
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत कौन सा होगा?
1: घर फिल्म में एक बहुत ही प्यारा गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गुलजार ने लिखा हुआ।
0: आपकी आंखों में कुछ महके हुए से
1: राहुल देवर्मन का संगीत,
0: आइए सुनते हैं।

ओंकार साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

जय श्री महाकाल। श्रोताओं, कहते हैं ना, जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। महादेव का अपने भक्तों से रिश्ता भी बड़ा अनोखा है। हम उन्हें कुछ दे या ना दे, बस सच्चे मन से उनका नाम ले लें। सुबह की शुरुआत करते हैं विपिन सचदेवा के गाए इस भजन के साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

सुबह 7:00 आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से सुबह 7:20 पर सुनिए सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:30 पर। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर। विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग प्रातः 11:00। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा 12:05 पर। सुरीला सफर सुनिए दोपहर 1:00। आकाशवाणी भोपाल से दोपहर 2:00 सुनिए फिल्म संगीत। विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम विविधा का प्रसारण होगा 2:30 पर। 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम नाट्य तरंग। पिटारा उजाले उनकी यादों का कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 4:00 से।

आकाशवाणी उज्जैन से शाम 5 बजे सुनिए युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भजन संध्या सुनिए शाम 6 बजे। 6:30 पर आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। शाम 7:05 पर सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। 7:21 पर होगा कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, मालवी समाचार और मालवी लोकगीत। रात 8 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत।

विविध भारती मुंबई से रात 9:30 पर सुनिए छाया गीत। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात 10 बजे से। रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। दिल्ली केंद्र से रात 11:10 से सुबह 5:50 तक आप सुन सकते हैं FM गोल्ड

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे।

0: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। एचपीवी टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना ब्रिक्स की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये पवित्र ग्रंथ सदियों से मानवता को निस्वार्थ सेवा, मानवीय गरिमा और एकजुटता का मार्ग दिखाता आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये पावन अवसर लोगों को इन मूल्यों को मजबूत बनाने और अधिक करुणामय तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी हमें सत्य, प्रेम, समानता और मानव सेवा का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर गुरु साहिब के बताए मार्ग पर चलकर मानवता के कल्याण में सहभागी बनने का संकल्प लेने का सभी से आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज आगरमालवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितम्बर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। सितंबर की किस्त के साथ ही योजना के प्रारंभ से अब तक महिलाओं को नियमित मासिक सहायता के रूप में अंतरित राशि 65,395 करोड़ हो जाएगी। जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाडली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को 100% कवरेज हासिल कर लिया है। ये अभियान माता पिता की सहमति से 14 वर्ष की लड़कियों को मुफ्त और स्वैच्छिक एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान करता है। हर टीका

0: टीकाकरण भारत को अपनी बेटियों के लिए एक स्वस्थ और कैंसर मुक्त भविष्य के करीब लाता है। टीकाकरण के बाद होने वाले दुर्लभ प्रतिकूल असर से निपटने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। अब शेष पात्र लाभार्थियों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एचपीवी टीकाकरण की पहल फरवरी 2026 में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज

रिजर्व के सिझोरा परिक्षेत्र के ग्राम कटंगटोला में कल वन विभाग ने सांभर के शिकार के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीराजपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में कल खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और झाबुआ जिले में तुरिया माही अप्रोच लाबरिया मार्ग के लिए 62,99,00,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। HPV टीकाकरण में मध्य प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल किया। प्रदेश में कल राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ मामलों का निपटारा। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात उज्जैन श्रोताओं, एक नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, बस जरूरत है उसे मुस्कुराकर अपनाने की। श्रोताओं, देश भर में कल से शुरू होने वाले 10 दिवसीय गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। इस दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना कर प्रतिदिन पूजा, आरती और भजन किए जाते हैं। बप्पा का आगमन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि नई शुरुआत, बुद्धि, शुभता और विघ्नों से मुक्ति की आशा लेकर आता है। तो आइए कल से प्रारंभ होने वाले इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं। अपने घर में मिट्टी के गणेश की स्थापना करते हैं और भक्ति, श्रद्धा, उल्लास के इस पर्व में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं।

फिल्म अग्निपथ के इस गीत को सुना अजय गोगावले की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और अजय अतुल का संगीत। और अब समय है उज्जैन की स्थानीय समाचारों का। उज्जैन सतत विकास के पथ पर अग्रसर है। चौड़ी सड़कें, ब्रिज निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार और इसी क्रम में मंगलनाथ मंदिर के कायाकल्प और विकास कार्यों के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण 99 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करेगा। विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। गुंबद का काम फिर शुरू हो गया। यहां 250 चौपहिया वाहनों की पार्किंग, वीआईपी पार्किंग, 7000 क्षमता की हॉल, भात पूजा के लिए विशेष पूजा स्थल, दुकानें सहित कई निर्माण किए जाएंगे। मानसून में शिप्रा नदी के किनारे और हरियाली के बीच मंगलनाथ मंदिर का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। अगली खबर है हमारी कचरा प्रबंधन को लेकर। कचरे से खाद, कपड़ा और गैस, एक साल में शुरू होंगे शहर के 3 नए प्लांट। शहर को कचरा प्रबंधन के मामले में और मजबूत बनाने के लिए नगर निगम ने 3 नए प्लांट की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अगले एक साल में शहर में हरित कचरा, कपड़ा कचरा और गीले कचरे के प्रसंस्करण से जुड़े ये तीनों प्लांट आकार लेते नजर आएंगे। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट में कचरे को सिर्फ नष्ट करने की बजाय उससे उपयोगी उत्पाद और ऊर्जा तैयार करने पर जोर रहेगा। शहर के पार्कों, बगीचों, डिवाइडरों और सड़कों से निकलने वाली सूखी पत्तियां, घास, टहनियां और अन्य हरित अपशिष्ट को अलग अलग एकत्र कर इस प्लांट में प्रोसेस किया जाएगा। प्लांट की क्षमता 50 टन प्रतिदिन होगी। इससे जैविक खाद सहित अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे। ये प्लांट PPP मॉडल पर नगर निगम की जमीन पर विकसित किया जाएगा। क्लॉथ वेस्ट घाटों पर कपड़ों का रिसाइकल किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों और घाटों के आसपास पुराने कपड़े एकत्र होते हैं, इन्हें व्यवस्थित तरीके से प्रोसेस करने के लिए 20 टन प्रतिदिन क्षमता का क्लॉथ वेस्ट प्लांट लगाया जाएगा। इसमें घाटों पर छोड़े गए कपड़े, पुराने वस्त्र और कपड़े की कतरनों को रिसाइकल कर उपयोगी कच्चा माल या अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। प्लांट की टेंडर

प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। तीसरा प्रोजेक्ट है बायोगैस को लेकर। शहर के गीले कचरे के लिए 175 टन प्रतिदिन क्षमता वाला CBG प्लांट प्रस्तावित है। इसमें रोज निकलने वाले गीले कचरे का प्रसंस्करण कर बायोगैस तैयार की जाएगी। पहले इस प्रोजेक्ट को गेल इंडिया के माध्यम से विकसित करने की योजना थी और इसके लिए अनुबंध भी किया गया था। अगली खबर, शहर में एक सप्ताह के बाद बरसे बादल, आज येलो अलर्ट, शाम को फिर तेज बरसात। पिछले साल की तुलना में इस बार जिले में 7.8 इंच कम बारिश हुई है, लेकिन शहर में एक सप्ताह बाद शनिवार को बारिश हुई। सुबह रिमझिम बरसात के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश थमने के कुछ देर बाद ही तेज धूप निकल आई। शाम 7 बजे से फिर तेज बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग ने रविवार को येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में 7.8 इंच कम बारिश हुई है। शनिवार सुबह अधिकांश इलाकों में बूंदाबांदी के बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई। इसके बाद दोपहर 1:30 पर फिर से तेज बारिश होने लगी। 15 मिनट तक तेज बारिश होती रही। इससे शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा, रात में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा। जीवाजी वेशशाला में शनिवार शाम बीते 24 घंटों के भीतर 0.2 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके पहले 5 सितंबर को शहर में बारिश हुई थी। वैधशाला में अब तक कुल 26 इंच बारिश रिकॉर्ड दर्ज की जा चुकी है। एक और खबर है, वटवृक्ष पर प्राकृतिक रूप से गणेश जी की आकृति दर्शन को पहुंच रहे हैं भक्त। मंगलनाथ क्षेत्र के आसपास कुछ वटवृक्ष और अन्य पेड़ों पर गणेश आकृति जैसी प्राकृतिक बनावटें सामने आई है। स्थानीय लोग इसे दुर्लभ स्वरूप मान रहे हैं। वटवृक्ष पर सूंड जैसी उभरी आकृति को स्वयंभू वटवृक्ष गणेश कहा जा रहा है। वही आग के पौधे की जड़ से बनने वाले स्वरूप को श्वेतार्क गणेश के नाम से जाना जाता है। इसकी पूजा का विशेष महत्व बताया है। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है। इससे पहले इन आकृतियों को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंगलनाथ मार्ग पर आसाराम बापू के आश्रम की लाइन में आगे एक वटवृक्ष पर सूंड जैसी आकृति दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने उस पर सिंदूर भी लगाया। दो दांत जैसी बनावट भी दिखाई दे रही है। माधवनगर अस्पताल के बाहर स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर परिसर में भी बरगद के पेड़ पर गणेश आकृति जैसी बनावट देखी गई। पंडित दीपक शर्मा के अनुसार मंगलवार, शनिवार और बुधवार को दर्शन के लिए भीड़ बढ़ रही है। अगली खबर इस्कान से है। इस्कान में आज से प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल 2000 श्रद्धालु जुटेंगे। इस्कान की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस्कान मंदिर में 13 से 19 सितंबर 2026 तक वार्षिक प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन भक्तों का आंतरिक अनुष्ठान रहेगा, जिसमें 10 से अधिक देशों से 2000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। इसी क्रम में 30 सितंबर को युवाओं के लिए आई लव भारत कार्यक्रम भी रखा गया है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में युवाओं को सफलता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए 13 सितंबर शाम 4 बजे भरतपुरी स्थित इस्कान मंदिर में आई लव भारत कार्यक्रम होगा। कल्याण शिवहरे और GL परमार के सानिध्य में होने वाले इस आयोजन की थीम वैदिक भारत की महिमा है। इसमें उज्जैन के स्कूलों, कोचिंग संस्थाओं और कॉलेज के करीब 5000 युवा शामिल होंगे। इसी के साथ हमारा आज का स्थानीय समाचार से संबंधित ये अंक यहीं समाप्त होता है और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन का अगला गीत फिल्म तेजाब से।

अमित कुमार अनुराधा पौड़वाल की आवाज़ें, जावद अख्तर की रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। श्रोताओं, 13 सितंबर भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख है। आज ही के दिन सन 1948 में स्वतंत्र भारत के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती के समाधान की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया गया था। उस समय हैदराबाद रियासत के निज़ाम भारत में विलय की बजाय अपनी रियासत को अलग बनाए रखना चाहते थे। बातचीत से समाधान नहीं निकल सका और परिस्थितियां लगातार गंभीर होती गई। ऐसे में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने कार्रवाई का निर्णय लिया। 13 सितंबर सन 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत में प्रवेश किया। यह अभियान कुछ ही दिनों में समाप्त हुआ और 17 सितंबर को निज़ाम ने युद्ध विराम की घोषणा की। 18 सितंबर को औपचारिक आत्मसमर्पण स्वीकार किया गया। ऑपरेशन पोलो केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। हैदराबाद में आज का दिन पोलो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म कर्मा से किशोर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की मधुर आवाज, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, 13 सितंबर से राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा में शुरू हो रहा है प्रसिद्ध बाबा रामदेव मेला। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कोई पैदल यात्रा करके आता है तो कोई दूर दराज से।

रानी मलिक के लिखे इस गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज़ें दी और नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया। श्रोताओं, अब बात एक ऐसे दिन की जिसे डिजिटल युग की शुरुआत कहा जाता है। 13 सितंबर को मनाया जाता है प्रोग्रामर्स डे। प्रोग्रामर यानी वो लोग जो कंप्यूटर और मोबाइल के लिए अलग अलग

सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम तैयार करते हैं। आज हम जिन मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे प्रोग्रामर्स की मेहनत और सोच होती है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 13 सितंबर को ही ये दिन मनाने की एक खास वजह है। ये सामान्य वर्ष का 256वां दिन होता है और कंप्यूटर की दुनिया में 256 एक खास संख्या है। तो आज के दिन उन सभी प्रोग्रामर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को सलाम, जो अपनी मेहनत और नई सोच से हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान बना रहे हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का एक और गीत, फिल्म सूर्या से मोहम्मद अजीज़, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें, संतोष आनंद की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, और कुछ ही देर में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
1: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस
0: लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
8: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
9: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
10: महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का ये पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रावेट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
0: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
9: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरिना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: ब्रिक्स लीडर्स कंडेम 2025 पहलगाम टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, कॉल फॉर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न ओवर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस इन वेस्ट एशिया। Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pehelgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
13: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April 2025, during which 26 people were killed and many more injured. The attack was later traced to terrorists backed and trained in Pakistan. The declaration also called for action against the cross-border movement of terrorists, terrorism financing, and safe havens. BRICS leaders also urged the member nations to ensure zero tolerance for terrorism and reject double standard in countering terrorism. They further called for concerted actions against all UN-designated terrorists and terrorist entities. The joint declaration also expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. It said the BRICS countries will increase efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. Saklayan Akhtar, Kashwani News, Delhi.
12: In his remarks yesterday, Prime Minister Narendra Modi noted that the New Delhi Declaration provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
14: बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
12: Mr. Modi has proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the chairship changing every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Torioka.
14: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
12: Today is the second and final day of the BRICS summit. Our correspondent has filed this report.
15: Today, BRICS member and partner countries will participate in the session based on resilience, innovation, cooperation and sustainability, shaping the future for inclusive global growth. The 10 partner countries are Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. After the conclusion of the session, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi. He will also hold meetings with vice presidents of Nigeria and Uganda. The summit is being held under India's BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with Dipendra Anand Kumar for Akashvani News Delhi.
16: Prime Minister Narendra Modi held a series of bilateral meetings with leaders of BRICS countries yesterday. A report.
17: Prime Minister Narendra Modi and President of China Xi Jinping have reaffirmed that India and China should take a strategic and long-term perspective of their ties and differences should not become disputes. During their bilateral meeting on the sidelines of BRICS summit, the two leaders welcomed the steady progress in India-China bilateral relations since their last meeting in Tianjin in August last year. The two leaders expressed commitment to a fair, responsible and mutually acceptable resolution of the boundary question, proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and their long-term interests of the two peoples. The two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues and in addressing challenges. Earlier in the day, Prime Minister Modi met his Ethiopian counterpart Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart Anwar Ibrahim and Vietnamese counterpart Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Both sides reiterated the importance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and agreed and also welcomed the UAE's International Holding Company's planned $11.5 billion investment in an integrated greenfield aluminium project in Odisha. With BRICS Team's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
16: A special cultural performance, Navras, the universe of shared emotions, was presented during the BRICS Leaders Summit Gala Dinner hosted by the Prime Minister at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. The cultural event featured the BRICS Symphony, One Rhythm, Many Cultures, bringing together musicians from BRICS members and partner countries in a unique collaborative musical performance.

0: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ ही न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं को संगीता का स्नेहिल नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से उज्जैनी आरजे, और आज का हमारा सफ़र है एक ऐसी अभिनेत्री के नाम जिसने 90 के दशक में अपनी सादगी और मुस्कान से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की, जिनका जन्म 13 सितंबर सन 1973 को दार्जिलिंग में हुआ था। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनकी पहली फिल्म परदेश के उस गीत से, जो आज भी देश प्रेम की भावना जगा देता है।
1: हरी रामा रामा रामा हरी,

कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, आदित्य नारायण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, महिमा का असली नाम रितु चौधरी था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापनों में काम किया था। बाद में निर्देशक सुभाष घई की सलाह पर उनका स्क्रीन नाम महिमा चौधरी रखा गया, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली साल 1997 में 97 की फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने कुसुम का किरदार निभाया और दर्शकों के साथ साथ फिल्म समीक्षकों ने भी उनके अभिनय को खूब पसंद किया। और अब आपको सुनवाते हैं महिमा की ही फिल्म दाग।

0: राजेश रोशन की धुन, समीर के बोल और कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं।
1: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
2: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, और उज्जैनी आरजे सेलिब्रेट कर रहा है हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा महिमा चौधरी का जन्मदिन। कभी कभी प्यार को कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, आंखें बहुत कुछ कह जाती है और दिल बहुत कुछ समझ जाता है। और अब आपको सुनवाते हैं महिमा पर फिल्माया एक और गीत, फिल्म बागबान से। इस फिल्म में उनकी भूमिका छोटी थी, किंतु पर्दे पर उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी।

फिल्म बागबान के इस गीत को लिखा था समीर ने। आदेश श्रीवास्तव की धुन पर आवाजें दी थी उदित नारायण अलका याग्निक ने। इस गीत में महिमा चौधरी और सलमान खान की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। इसके बाद उन्होंने दाग द फायर, प्यार कोई खेल नहीं और दिल क्या करे जैसी लगभग 40 से अधिक फिल्मों में काम किया। और अब बात करते हैं उनकी अगली यादगार फिल्म धड़कन की। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।

फिल्म धड़कन, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, महिमा चौधरी ने धड़कन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई थी। कुछ फिल्में सिर्फ कहानी नहीं होती, वे अपने गीतों और किरदारों की वजह से याद रह जाती है। धड़कन भी ऐसी ही फिल्मों में शामिल है। महिमा के लिए इस फिल्म का गीत अक्सर इस दुनिया में भी खास रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे धड़कन का अपना पसंदीदा गीत बताया था। और अब सुनिए महिमा पर फिल्माया एक और गीत।

0: श्रोताओं, फिल्म परदेश के इस गीत को आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन दी नदीम श्रवण ने। एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं।
1: एक नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट, ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस?
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है,
4: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, और उज्जैनी आरजे सेलिब्रेट कर रहा है हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा महिमा चौधरी का जन्मदिन। श्रोताओं, महिमा चौधरी की खासियत रही उनकी सहज अदाकारी। वे पर्दे पर बनावटी नजर नहीं आती थी और शायद यही सादगी दर्शकों को उनसे जोड़ती थी। अब सुनते हैं महिमा की फिल्म कुरुक्षेत्र से इस गीत को।

कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को, समीर के बोल, संजीव दर्शन का संगीत। दोस्तों, प्यार, रिश्ते और भावनाओं की बात हो तो हिंदी फिल्मों के गीत हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो दर्द और जज्बात को आवाज़ देता है। और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तेरे नाम से इस गीत को।

0: फिल्म तेरे नाम के इस गीत को समीर ने लिखा, हिमेश रेशमिया ने आवाज़ धुन बनाई और उदित नारायण, अलका याग्निक, के कमाल खान की आवाज़ें। श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद मिलते हैं।
1: कमाई भी मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, और उज्जैनी आरजे सेलिब्रेट कर रहा है हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा महिमा चौधरी का जन्मदिन। एक अभिनेत्री की पहचान सिर्फ उसकी फिल्मों से नहीं होती, उसकी पहचान उन यादों से होती है जो वो दर्शकों के दिल में छोड़ जाती है। महिमा चौधरी ने अपने 28 वर्ष के लंबे करियर में 40 से अधिक फिल्में की, कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन फिल्मों से उनका रिश्ता बना रहा।

फिल्म परदेस उनके लिए बेहद खास साबित हुई। उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें जी सिने अवार्ड और लक्स फेस ऑफ द ईयर जैसे सम्मान भी मिले। आगे चलकर धड़कन में उनके अभिनय के लिए उन्हें बॉलीवुड मूवी अवार्ड और सेंसुई व्यूअर्स चॉइस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यानी महिमा चौधरी का फिल्मी सफ़र सिर्फ खूबसूरत चेहरे की कहानी नहीं बल्कि मेहनत, अभिनय और लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी भी है। और अब आपको सुनवाते हैं महिमा की ही फिल्म से एक और गीत।

फिल्म गुमनाम द मिस्ट्री से सुना इस गीत को। उदित नारायण मोनिका नाथ की आवाज़ें, समीर की शब्द रचना और नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, दार्जिलिंग से शुरू हुआ सफ़र, मॉडलिंग से फिल्मों तक का सफ़र, परदेश से मिली पहचान और फिर कई यादगार फिल्मों और गीतों का सफ़र। महिमा चौधरी ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 13 सितंबर को हम महिमा चौधरी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

फिल्म परदेश के इस गीत को आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना, नदीम श्रवण का संगीत। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मैं हूं आपकी आरजे संगीता। अगली मुलाकात में किसी अन्य प्रसंग पर चर्चा होगी। आकाशवाणी उज्जैन से कुछ ही देर में सुनिए नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुरों की धड़कन, गीतों की रवानी और बॉलीवुड की रंगीन कहानी, जहां हर धुन अपने साथ एक एहसास लेकर आती है। तो आइए संगीत के इसी खूबसूरत सफर में कदम बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म 1947 अर्थ से। जावेद अख्तर की रचना को AR रहमान ने मधुर धुन दी। सुनिए हरिहरन की आवाज़ में इस गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अगत्या से। सत्य प्रकाश की आवाज़, सजीव सारथी के शब्द और युवान शंकर राज की धुन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन की प्रस्तुति नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आर्टिस्ट से।

श्रोताओं, रतन ऋषि के लिखे इस गीत को आवाज़ दी संतोष कल वाचरेला के द्वारा और इसकी धुन बनाई सुरेश बॉबिल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आज़ाद से। अरिजीत सिंह, अमित त्रिवेदी की आवाज़, स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द और अमित त्रिवेदी, सनी सुब्रमण्यम की धुन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए बागी फोर से। स्टीविन बेन की आवाज़ समीर अनजान के लिखे इस गीत को धुन दी है सिद्धांत मिश्रा ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। और अब आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान, मीका सिंह, नौरा फतेही की आवाज़ में फिल्म बी हैप्पी के इस गीत को, जिसकी धुन बनाई हर्ष उपाध्याय ने और इसके गीत को लिखा है प्रणव वत्स, हर्ष उपाध्याय, सुकृति भारद्वाज के द्वारा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, और बॉलीवुड बीट्स के इस अंतिम गीत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगला कार्यक्रम आपकी फरमाइश कुछ ही देर में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपका स्वागत है और संगीता के साथ चलिए इस संगीत यात्रा पर जहां आप सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की सुरीली आवाज़ में फिल्म सूरज और चांद के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की। श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है श्रीराम कॉलोनी उज्जैन से जगदीश कांबले, कमल, रवि, पंकज, नवीन, धर्मेंद्र, राजेश, अनामिका, ज्योति, पूजा, अक्षदा कांबले, राजगढ़ मध्य प्रदेश से अंबाराम साहू, तेजाराम, कमलजीत, राहुल, बंटी, सोना, रवीना, कविता, पूर्णिमा साहू और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा के द्वारा।

श्रोताओं, अगली फरमाइश एक ऐसी रचना है जिसकी जड़ें सदियों पुराने सूफी काव्य में हैं। छाप तिलक अमीर खुसरो की प्रसिद्ध सूफी रचना है। 1978 की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की में इसे लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने गाया। फिल्म के लिए इस गीत की पारंपरिक रचना को नए संदर्भ में ढाला आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आशा भोंसले ने भी इस गीत को अपना पसंदीदा लता आशा युगल गीतों में गिना था। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है मंदसौर जिले के गरोट से अवंतीलाल जी।

रामकृष्ण, अजीतनाथ, संभवनाथ, आर्या, अनन्या, अर्चना, आस्था, जीनिका, जिनवाणी, अरिहंत, जिनेश, मोक्ष, सम्यक और सिद्धार्थ जैन, और नीमच से वर्धमान, श्रेयांश, शांतिनाथ, वीर, नैमिनाथ, जितेंद्र, श्रेया, रिद्धि, प्रतिज्ञा, प्रज्ञा, सिद्धि नहाटा, और बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर। तो आइए सुनते हैं फिल्म में तुलसी तेरे आंगन की के इस गीत को।

श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अगला गीत मौसम और प्रेम को एक साथ जोड़ता है। गीत में बदलता मौसम प्रेमी मन की बेचैनी और आकर्षण का प्रतीक बन जाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और रजनीकांत जैसे सितारे थे। इस गीत को स्वर से सजाया आशा भोसले और एस पी बालासुब्रमण्यम ने। आनंद बख्शी की रचना को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन दी। और श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है टंकी चौक आगरमालवा से राजेश, कृष्णकांत, श्याम, राजेंद्र, राकेश, धर्मेंद्र, रामदयाल, रामप्रसाद, रामबाबू, प्रमीला, उषा, उमा, श्रुति, श्रद्धा, अदिति, गरिमा श्रीवास्तव के द्वारा। साथ ही आगरमालवा के सुसनेर से भी इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है नवीन, रोहित, मोहित, अमित, सुमित, राहुल, आकाश, विकास, नितिन, सचिन, मनीष, स्नेहा, नेहा, पूजा, प्रिया, राधिका, काव्या, दिव्या, पायल, ज्योति, आरती कालरा के द्वारा। साथ ही नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, ये सभी फिल्म अंधा कानून के इस गीत को सुनना चाहते हैं।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुहाग से, जिसे आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन को शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी अमृतसर रोपड़ पंजाब से हरप्रीत, जसप्रीत, नवजोत, अमनदीप, सिमरन, सुखप्रीत, मनदीप, प्रभजोत, हरलीन, गुरलीन, गुरप्रीत, मनप्रीत, हरमन, अमन, गुरविंदर, सुखविंदर, जसविंदर, रणजीत, दिलप्रीत सिंह के द्वारा। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। श्रोताओं, पुराने गीतों में रिश्तों और भावनाओं को कितनी सहजता से पिरोया जाता था। अब एक ऐसा गीत जिसमें मोहब्बत की नज़ाकत दिखाई देती है। ये गीत साहिर लुधियानवी के रोमांटिक गीतों में गिना जाता है। मोहम्मद रफ़ी ने इसे बड़ी नफासत और कोमलता से गाया। धुन बनाई रवि ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है पटेल नगर उज्जैन से रोहित, नेहा, अमित, पूजा, राहुल, प्रिया, आकाश, विकास, सचिन, अंजलि, राधिका अग्रवाल और समीर, स्वाति, अमोल, अरुण, रश्मि, तन्वी, विवेक मेहता के द्वारा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश के द्वारा। तो आइए हम सुनते हैं इस गीत को फिल्म काजल से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो सामान्य रोमांटिक गीतों से थोड़ा अलग है। साल 1960 में आई फिल्म बॉम्बे का बाबू के इस गीत को देवानंद और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया। ये गाना आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। इस गीत को आशा भोसले ने स्वर से सजाया, एस डी बर्मन के संगीत को शब्द दिए मजरूह सुल्तानपुरी ने। 60 के दशक के गीतों की अपनी एक अलग मिठास थी, सरल बोल, लोकरंग और याद रह जाने वाली धुन।

फिल्म बॉम्बे का बाबू के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी विजयनगर इंदौर से राजेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, दिनेश, महेश, राकेश, नरेश, आशीष, मनीष, सीमा, रीना, पूजा, नेहा गुप्ता के द्वारा, और राइट टाउन जबलपुर से अजय वर्मा, विजय, संजय, अभय, विनय, सुनील, अनिल, अतुल, रश्मि, काजल, प्रिया, श्वेता वर्मा के द्वारा, साथ ही गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले के द्वारा। और अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसे सुनकर आपको भी अपनी पहली मुलाकात याद आ जाएगी। फिल्म पराया धन के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है सिटी सेंटर ग्वालियर से स्नेहा पाटिल, गरिमा, रवीना, स्वाति, नेहा, कमला, प्रिया, राधिका पाटिल, और कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली के द्वारा। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर इस गीत को।

श्रोताओं, ये गीत राकेश रोशन पर फिल्माया गया था और इसमें वे घोड़े की सवारी करते हुए अपनी होने वाली प्रेमिका से पहली मुलाकात की कल्पना करते दिखाई देते हैं। किशोर कुमार की आवाज़, आरडी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल ने इसे यादगार बना दिया। और अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसमें प्रेम को जादू के रूपक में व्यक्त किया है। प्रेमी के आने से दुनिया और नज़ारे बदल जाते हैं। आरडी बर्मन की धुन और लता जी की आवाज़ ने इसे बेहद लोकप्रिय बनाया। आरडी बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की रचना ने इस गीत को अमर बना दिया। श्रोताओं, इस कुदरत फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है स्टेशन रोड रतलाम से विवेक चौहान, अमर, गौरव, आकाश, नीलेश, अनिल, अतुल, संजय, विजय, अजय, दीपक, ममता, शालिनी चौहान के द्वारा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद। आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद पर इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और अब सुनिए एक ऐसा गीत जिसे मीना कुमारी पर फिल्माया गया और गीता दत्त की आवाज़ ने इसमें विरह, प्रेम और आत्मसमर्पण का बहुत सूक्ष्म भाव दिया। फिल्म साहेब बीबी और गुलाम के इस गीत के रचनाकार हैं शकील बदायूनी और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। दोस्तों, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे दिल में उतरते हैं और फिर इंसान को खुद की सुध बुध भी नहीं रहती। प्यार जब दिल में उतरता है तो आवाज़ नहीं करता, बस महसूस होता है।

श्रोताओं, इस मधुर गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी थी गोलगंज छिंदवाड़ा से राजेश ठाकुर, सुरेश, महेश, राकेश, दिनेश, मुकेश, नरेश, आकाश, विकास, वर्षा, पूजा, कविता, राधिका ठाकुर के द्वारा। और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जिसे गुनगुनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, साल 2001 में आई फिल्म धड़कन के इस गीत को आज भी लोगों के दिलों में बसा है। इस गीत के लिए अलका याग्निक को 2001 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें, समीर के बोल और नदीम श्रवण के संगीत से सजे इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है आनंद नगर खंडवा मध्य प्रदेश से आदित्य, ज्वेल, अभिषेक, अमन, अर्पित, करण, गौरव, निखिल, मयंक, देवेंद्र, धर्मेंद्र, मनीष, रविंद्र, नेहा, शालिनी, रितिका, अंजलि, ज्योति, प्रीति, काजल, ज्वेल के द्वारा। साथ ही पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। आइए सुनते हैं फिल्म धड़कन के इस गीत को।

आशा की सुरमय जुगलबंदी, किशोर दा की शरारत, गीता दत्त की भावुकता और नई पीढ़ी के लोकप्रिय प्रेम गीत सबका संगम रहा। कुछ गीत कानों तक आते हैं, कुछ दिल तक पहुंचते हैं और कुछ गीत जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। आपकी फरमाइश यूं ही आती रहे और संगीत की ये महफिल यूं ही सजती रहे। मैं संगीता आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। आकाशवाणी उज्जैन अब न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में सुनिए विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रस्तुत है विशेष रूपक साहित्य कल और आज। दोस्तों हिंदी दिवस केवल हिंदी बोलने या हिंदी में भाषण देने का दिन नहीं है, ये दिन हमें एक छोटा सा सवाल पूछने का अवसर देता है। क्या हम अपनी भाषा से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी अपनी भाषा पर गर्व करते हैं? भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। 14 सितंबर हमारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है। हिंदी की कहानी सिर्फ 1949 से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि उन्हें तलाशते तलाशते हम संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तक पहुंच जाते हैं। समय बदला, बोलियां बदली, शब्द बदले और भाषा भी अपना रूप संवारती गई। ब्रज ने इसे माधुर्य दिया, अवधि ने उसे लोक की आत्मा दी।
1: पुरा के पतवा सर के डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो।
0: खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी को स्वरूप दिया। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और भारत की अन्य भाषाओं से आए शब्दों ने उसके शब्द भंडार को और विस्तार दिया। यही तो हिंदी की खूबसूरती है, वो अपने भीतर बहुत सारी भाषाओं को समेट कर चलती है, इसलिए हिंदी भाषा से बहुत जल्द प्यार हो जाता है।

0: दोस्तों, हिंदी आज हर वर्ग हर दौर के लिए कितना, कैसे और क्यों आवश्यक है। हिंदी किस तरह समृद्ध है, आइए जानें एक ऐसे साहित्यकार से जो लेखन की दुनिया के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें पढ़कर युवा लेखकों की कलम समृद्ध होती है। आप हैं प्रियमवत जी।
1: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीज़ों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
0: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की।

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ। यहीं से शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

उसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना, महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बालकवि बैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शेखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में।
0: जी।
1: और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादंबरी, दूसरा है अनामिका जी का तृणधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का अर्धसत्य बहुत समझ में आती है। इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की।

0: इसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेकर बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैलांचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की डायरी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो 3 वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेनजी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा। तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुलती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की, अच्छी हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
1: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
0: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी। उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है। और 100 पेज का उसमें नोट्स है भारतीय संगीत को, फोक म्यूजिक को, ज्यादातर शास्त्रीय संगीत और सेमी क्लासिकल की बात है। ये समझने की दृष्टि देने के लिए उस किताब के लिखने के पीछे का ध्येय था कि हम गाना सुनते क्यों हैं और गाना सुन के सराहते क्यों हैं। उस किताब को लिखने की प्रेरणा जॉन बर्जर की किताब वेज ऑफ सिंग के ऊपर आधारित है, किस तरह से पेंटिंग को देखना समझना चाहिए, किस तरह से शास्त्रीय संगीत को सुनना चाहिए। और अगर मेरी किताब पढ़ते हुए किसी युवा व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी संगीतज्ञ में, जो बच्चा सीख रहा है, जो गाने की तैयारी कर रहा है, भले वो प्लेबैक सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन बाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे पढ़ते, उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसे इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती हैं।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षणभंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

इनकी कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।

0: इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर लें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को, 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्फा तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से तो बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का 80, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं अब उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गम भय दरियाओं, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये 5 उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो 5 ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और 6 आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा, इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खास तौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा। इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है, मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस परीक्षा शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। तो उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता से प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़े। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाड़कर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था, बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा, तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना

0: चाहिए। जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उल्टे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
1: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। ये हैं उर्मिला शिरीष।
2: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मान रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता, नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियां आज भी उतनी ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी नक्श लालपुरी शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम

0: मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, पुष्यमित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता कृतिका की पढ़ी है और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है और होनी ही चाहिए।
1: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दातापीर का आपने जिक्र किया, तो उन्हीं की किताब जूठी गली, उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश बानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं।
0: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें, मैं चाहूंगा कि रील्स वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं, लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें।
1: जी
0: से गुजरे,
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी

0: ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
2: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
2: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
3: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
1: जी,
3: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला

0: सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादेह से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में, फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो वो इबारत हमने पोस्ट कर दी थी और देखते हैं कि आपने कौन कौन से शब्द चुने हैं, कौन कौन से गीतों की लिस्ट बनाकर भेजी है वहां पर, और हमारी लिस्ट से आज वो कितनी मिलती जुलती है। अगर वो फहरिस्त हमारी लिस्ट से ना भी मिले तो भी आप अपने पसंद के गीत उन शब्दों से चुनकर लेकिन वहां लिख सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस इबारत को अभी तक नहीं पढ़ा है। इबारत कुछ इस तरह से है। वो दोनों पहली बार एक सफर में मिले थे। मुलाकात छोटी थी लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा बार बार याद आता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि जाने कैसे और कब एक अजनबी से दिल का इकरार हो गया। फिर मुलाकातें होने लगी। दोनों अक्सर हंसकर कहते, जब हम दूर होंगे ना तो ये गीत याद रखना। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता वो उसकी जिंदगी का वो मीत है जिसका इंतजार शायद बरसों से था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द कम पड़ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते। कुछ खूबसूरत पल देकर चले जाते हैं और हम बस तड़प कर उनका नाम ही ले पाते हैं। लेकिन उस प्यार की खूबसूरती यही थी कि उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। फिर खिड़की से आती हवा को महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, आने वाला पल जाने वाला है, तो जो पल मिला है उसे खोने का अफसोस क्यों। तो ये थी इबारत। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और मुझे इंतजार है आपके संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से, खयाम का संगीत था। इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है। आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी शामिल होंगे, और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हम सफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हम दम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है। वो भी एक सफर था, कुछ पल साथ चले फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ, ऐसा भी होता है कि मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हमसफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है। एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ, इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में, और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल और एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को, रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं, लेकिन फिर बिछड़ना भी होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारा, हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफ़ी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो एक सप्ताह तक स्कूल आई लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एक सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम हराई प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उबरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध भारती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नज़दीकियाँ हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है। आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहाँ उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं। किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाए नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एसडी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।

0: लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नज़रें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नज़रें मिलते ही नज़रें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं, बिल्कुल गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। है, देखते हैं अब फहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ, बिल्कुल कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं, और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहाँ एक आम नागरिक के तौर पर हूँ और मैं लाइन में ही खड़े रहूँगा। ये कहीं का जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज़्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए जहाँ से भी हमें सीखने को मिले, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहाँ पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर, तय किया अनुराधा के संग।
1: कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आप

रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का एक गीत। आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आशा से, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कुछ ही देरों में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन नई दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। सम्मेलन में ब्रिक्स देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
1: आज के इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, बुरुंडी, युगांडा और नाइजीरिया के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शनिवार को ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली के घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के खातों में सीधे 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई जाएगी। अब तक महिलाओं के खातों में करीब 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मानव अधिकारों के संरक्षण और शासकीय योजनाओं की पहुंच पर चर्चा हुई। इस दौरान जनजातीय कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने आयोग की विषय आधारित स्मारिका और डायरी का विमोचन किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हर व्यक्ति के हितों अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 17 सितंबर को उज्जैन के महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58,00,000 आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेजों की खाली सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। इसके तहत 12 से 16 सितंबर तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस दौरान सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों में खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी 16 सितम्बर तक संबंधित कॉलेज में पहुंचकर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भगवान महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया और पंचामृत से अभिषेक पूजन हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग, चंदन, सूखे मेवे, सिंदूर और आभूषणों से राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज धार, बड़वानी में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जबकि इंदौर, उज्जैन संभाग सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ के असर से अगले 2 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक है, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
6: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण है।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जब जब फूल खिले, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। नंदा ने साथ दिया, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत तेरे घर के सामने फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। तीन देवियां फिल्म का नाम, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हिमालय की गोद में, फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं, और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी परवन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बैंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने इसे लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुंभार, पद्मावती कुंभार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से मोहम्मद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: यार घोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन घोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौश भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
0: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था। पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
0: अरे घोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से।
1: हाँ चलो।
0: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
0: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
0: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
0: अरे हाँ यार, याद आया,
2: यार मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
2: ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूं।
1: हाँ।
2: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।
1: नहीं, नहीं।

0: बेटा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्तों काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी।
1: ओह,
0: घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: ओह अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं।
0: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
1: हाँ।
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा
0: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा भाई
1: हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर फिर चलेंगे। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा, इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, जरा पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूं।

0: है ये मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात ये हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल? लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। खैर, मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उस खासी टिप भी दी वो, इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
0: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई।
1: ओके,
0: वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
1: हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ अब साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ, होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ है तो अजीब ही, वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया, सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
0: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
0: वो कैसे?
1: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
0: अरे
1: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
0: तो

0: फिर आपने क्या किया?
1: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
0: ओह,
1: तब से मैं यूं ही भटक रहा हूं। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहां ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
2: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
1: हाँ,
2: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
1: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
2: वो कैसी मुश्किल?
1: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी। तब तक मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
2: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
1: क्या?
2: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
1: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
2: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
1: मिस्टर गोटी,
2: हाँ, आप
1: क्या सोचने लगे?
2: जी वो
1: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुना। कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ हाँ,
1: अच्छा?
2: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
1: हो,
2: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
1: अच्छा?
2: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
1: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
2: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, अब पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
1: नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
2: हाँ,
1: लेकिन यहां तो मैं अपने ही देश में हूं। गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूं।
2: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं?
1: नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर गोटी,
2: हाँ हाँ, कहिए कहिए।
1: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो।
2: हाँ हाँ, बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
1: क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ 1-2 दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस बस

0: कि दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं बस।
1: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया।
1: हाँ
0: शुक्रिया, इस भलमन साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
1: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
1: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी
1: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: साइमन साहब, आप साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था। मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में नहीं है। इसमें भी नहीं है।
1: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ
0: हाँ, वही वही वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई।
1: खो गई। एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: लेकिन मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूं।
2: अरे साइमन साहब, साइमन साहब रुकिए।
1: साइमन साहब,
0: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
0: गवाह?
1: हाँ, ये देखिए साबुन की टिकिया। हा? आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: हाँ, वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
0: जैसा आप ठीक समझें।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है।
0: हाँ,
1: मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान, अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। ये लीजिए। ये रहा मेरा कार्ड।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा अरे अरे साइमन साहब ये साबुन तो लेते जाइए।
0: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए अभी

ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए और वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्ग वायर हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे। लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग वायर, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी। वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है। बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक सावन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का यह हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते।

0: मैं बहुत खुश हूँ
1: जी,
0: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूँगी।
1: जी बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार बिमल रॉय साहब को। हम बिमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में बिमल रॉय साहब?
0: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
0: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
1: जी।
0: उनके साथ उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी,
0: बहुत
1: जी।
0: ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
0: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
0: रूप ही बदल जाता था,
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे।
0: जी सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
0: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़ा हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
0: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही?
0: जी, लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
0: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं। उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है, और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
0: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
0: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
0: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
1: जी।
0: जी
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी, और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे?
0: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी, जी। तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी, ऐसा कुछ हुआ कभी?
0: नहीं, पिताजी हमेशा, पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखें।
1: अच्छा।
0: और हम कभी, हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता है तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर में
1: जी।
0: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है
1: जी।
0: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा,
0: बहुत प्रभाव। हाँ,
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे।

0: पर्सनली इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली,
1: जी
0: तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना,
1: बहुत एथिक्स थे,
0: एटीट्यूड, हाँ उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सब के बारे में। और हम लोग ने वही सीखा है पिताजी, वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब चले गए, तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा,
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था
1: जी।
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिता का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे
1: जी।
0: हाँ, उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें से सिगरेट निकोटिन का दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको
1: जी।

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई, उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से, हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था, हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह के घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहाँ से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजेडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था, वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं हम, जब ईस्ट बंगाल चलेंगे सोचते थे कि हम जाएंगे वहाँ पे, तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया,
0: मन में रहा,
1: मन में रहा,
0: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा
1: जी जी
0: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे फिल्म विल्मों को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सबसे फिल्म, सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके जब लोग देखते हैं ना, तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी, हाँ उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के
0: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है?
1: जरूर, मैं तो बोलूंगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
0: जी,
1: इतना उसका प्रभाव था। हाँ, एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी तो मैं आपको बता ही नहीं सकते, आप वो देखने वाली एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये
0: जी। तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें, आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है,
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ। तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ।
1: लेकिन ठीक है, हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ
0: जी।
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: और ये लोरी बहुत, हाँ आप बता रही थी,
1: लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादरा में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह,
0: सुबह चार बजे
1: रिकॉर्डिंग।
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है, हाँ। ये तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली,
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे, मतलब?
1: नहीं, बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार,
1: और एक चीज, फर्स्ट टाइम साहिर लुधियानवी ने गाना लिखा था उसमें,
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत, हाँ। है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, गीत तो पसंद है ही, और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है उसमें।
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसके कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास,
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा,
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ यही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर
0: जी,
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती।

0: थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में।
1: जी
0: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को और फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं। पारू का ये जो किया था
1: अभी नहीं था,
0: हाँ
1: वो कोई और कर ही नहीं सकता था, ऐसा बिमल रॉय साहब का मानना
0: था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारू की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है।
0: जी,
1: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के?
0: लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
1: जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
0: हाँ उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबन किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसीलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है।
0: बहुत,
1: तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से, हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था,
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
1: जी,
0: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
1: जी जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था, तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो एडल्ट उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी होगी। हाँ, तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी जी, बिल्कुल। हाँ।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था। तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे। और
1: फिल्म दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि फिल्म दुनिया में
0: रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आना देखते थे। मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी, हमारे बिमल रॉय में बिमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे?
0: जी जी,
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है, वो उनका फिल्म का ये है
0: लोगो।
1: तो ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी। जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
0: जी,
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए बंगाली लिटरेचर से। सुजाता के बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता, पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनको जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
0: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रही होंगे आपके पिता के?
1: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया।
0: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी की किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
1: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
0: जी।
1: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला, क्यों, क्या बात है
0: जी?
1: तो बोले, हम प्रेग्नेंट है, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे, उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला बिमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
0: जी जी।
1: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
0: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
1: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
0: जी,
1: ओपेरा हाउस पे रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था उस।
0: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए, बताइए।
1: श्योर, जरूर।
0: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स, जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो, मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा है, उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना,
0: संगीतकार भी एसजी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एसजी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एसजी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे
0: इस कहानी को,
1: इस कहानी
0: उस किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्लानी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, इनका नाम था जरा संध, पेन नेम, तो उन्होंने लिखा था। तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्लानी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना, राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को, इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया, ये बहुत लाजवाब था गुलजार का।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था। तो एक गाने का कहीं जरूरत हुआ तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेला। अच्छा, तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे, हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमल रॉय प्रोडक्शंस
0: जी।
1: हाँ, पिताजी का बोलने पर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम से ज्वाइन कर लिए।
0: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज़ किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधनी के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमती के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमती का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमती का जो मधुमती लिखा गया था खाली पिताजी को प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है, बिकॉज ऑफ द म्यूजिक,
1: बिकॉज
0: ऑफ ऑल द कास्टिंग, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
1: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए,
0: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए। तो मधुमती उसी हिसाब से बना गया
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त? आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में। तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं, आप कहें

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आजकल?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना। तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बात है।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास
0: जी,
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन
0: जी,
1: ये 4। इधर है एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा,
1: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है।
0: हुँ.
1: 4 फिल्में, नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी, DVD नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा,
1: सबकी हाँ
0: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी।
1: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ,
0: यू नो,
1: इतना उसका असर है। और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
0: हाँ,
1: ये तो मधुमती के साथ है। 2 बीघे जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और 2 बीघे जमीन दोनों।
0: हाँ, कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
1: नहीं, ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
0: अच्छा।
1: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
0: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है।
1: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया है NGO के साथ
0: जी,
1: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके। और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी
0: जी,
1: कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है वो वेरी

0: डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई हैं और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है, काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं, बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखे हैं, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमति, खास मधुमति का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी।
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई लोगों के, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी हिंदी भाषाओं में।
0: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्म में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था, क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं?

0: बनाई हुई
1: जी।
0: रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम की 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के कार्यक्रमों का प्रारंभ हम कर रहे हैं कार्यक्रम युववाणी के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं ऋषि
1: और मैं हूं अनुष्का।
0: और आज का हमारा टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में शायद हर दूसरा युवा कभी ना कभी सोचता है, यार नौकरी करूं या अपना कुछ शुरू करूं। और फिर उसके बाद दूसरा सवाल आता है, लेकिन शुरू करूं तो शुरू करूं कैसे।
1: और तीसरा सवाल ये भी आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे।
0: और चौथा, अगर बिजनेस नहीं चला तो।
1: पांचवा ये भी आ जाता है ऋषि, कि घर वालों को कैसे समझाऊं।
0: बिल्कुल, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने से पहले ही इतनी प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि इंसान सोचता है नौकरी ही ठीक थी।
1: लेकिन आज हम डराने नहीं आए हैं। आज बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई हुनर है, कोई छोटा बिजनेस शुरू करने की इच्छा है, तो शुरुआत कहाँ से की जा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, सरकार की तरफ से युवा एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह की मदद मिल सकती है।
0: क्योंकि आज एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी, बड़ा ऑफिस और सोशल मीडिया पर फाउंडर लिखना नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर आपने अपने शहर में एक छोटी सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डिजिटल सर्विस, हैंडीक्राफ्ट बेचने का काम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का मार्केट, ये भी अगर शुरू किया है तो ये भी एंटरप्रेन्योरशिप है।
0: बिल्कुल, और जरूरी नहीं है दोस्तों आपका पहला बिजनेस यूनिकॉर्न बने। पहले कस्टमर बनेंगे, फिर रेवेन्यू बने, फिर जाकर बिजनेस बढ़ेगा।
1: तो आज की पूरी बातचीत इसी जर्नी पर होगी, आइडिया से लेकर पहला कस्टमर और गवर्नमेंट सपोर्ट से लेकर फंडिंग तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से

0: एंटरप्रेन्योर आखिर बनते कैसे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब सोचने से पहले सुनते हैं एक गीत जो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देगा,
1: क्योंकि कभी कभी बिजनेस प्लान से पहले मूड का प्लान बनाना पड़ता है।
0: बिल्कुल, तो सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने सुना था फिल्म रॉकस्टार का ये मधुर गीत, जिसे गाया था मोहित चौहान ने, गीत दिया था इरशाद कामिल ने और संगीतकार थे AR रहमान। वेलकम बैक टू युवाणी दोस्तों। अनुष्का, एक बात बताओ, अगर किसी युवा को एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा?
1: नहीं,
0: ऑफिस?
1: नहीं,
0: लैपटॉप?
1: जरूरी नहीं है,
0: फिर
1: एक प्रॉब्लम देखने की नजर।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस अक्सर किसी बहुत बड़े आइडिया से नहीं बल्कि किसी छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू होता है।
1: सोचिए, किसी को अपने शहर में अच्छी होममेड चीज नहीं मिल रही थी, किसी किसान को प्रोड्यूस बेचने में परेशानी थी, किसी इलाके में अफोर्डेबल फूड डिलीवरी नहीं थी, किसी को छोटे बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया मैनेज करने वाला नहीं मिल रहा था। ये सब भी ऋषि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही है ना?
0: बिल्कुल, मतलब एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो हर समय सोचता रहे मुझे बिजनेस करना है। एंटरप्रेन्योर वो है जो पूछता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है और मैं उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकता हूँ।
1: और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कई बार हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं आइडिया कैसा है, फ्रेंड बोलेगा भाई बहुत अच्छा है और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन असली टेस्ट फ्रेंड का नहीं कस्टमर का है।
0: बिल्कुल, अगर कस्टमर पैसे देने को तैयार है तभी पता चलेगा कि आइडिया सिर्फ अच्छा सुनाई देता है या सच में अच्छा बिजनेस बन सकता है।
1: तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, और दूसरा स्टेप है कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। फिर आता है तीसरा स्टेप, जिसमें छोटे लेवल पर टेस्ट करना होता है, और चौथे स्टेप में देखो कि लोग पैसे दे रहे हैं या फिर सिर्फ तारीफ कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तारीफ से ईगो खुश होती है लेकिन रेवेन्यू से बिजनेस चलता है।
1: अब आते हैं सबसे पॉपुलर सवाल पर, बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए ऋषि?
0: इसका जवाब है बिजनेस पर डिपेंड करता है।
1: हाँ, अगर आप एक स्मॉल डिजिटल सर्विस शुरू कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अलग होगी, फूड बिजनेस अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ये सब अलग अलग होगी।
0: बिल्कुल, लेकिन एक मिस्टेक बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर करते हैं, वे शुरुआत में ही बहुत बड़ा खर्च कर देते हैं।
1: ऑफिस, फर्नीचर, लोगो, वेबसाइट, एक्सपेंसिव पैकेजिंग और बिजनेस अभी शुरू हुआ ही नहीं पर ये सब चाहिए होता है। और पहले दिन ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका काम घर या छोटे सेटअप से शुरू हो सकता है। पहले 100 कस्टमर्स समझिए, फिर 1000 को सोचिए।
0: मतलब पहले प्रूफ और एक्सपेंशन, और अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है तो यहाँ गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर कर दे, गवर्नमेंट स्कीम का मतलब हमेशा फ्री पैसा नहीं होता है।
1: बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कई स्कीम्स लोन बेस्ड होती है, मतलब पैसा मिलता है लेकिन उसे वापस भी करना होता है। कुछ स्कीम्स में सब्सिडी या क्रेडिट लिंक सपोर्ट होता है, कुछ में मेंटरशिप, ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस या इंक्यूबेशन जैसी मदद होती है। लेकिन किसी भी स्कीम को सुनकर ये मत सोचिए वाह सरकार पैसा दे रही है अब तो बिजनेस शुरू। पहले एलिजिबिलिटी समझिए, फिर टर्म समझिए, फिर रिपेमेंट समझिए।
0: दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक रूल है, पहले कैलकुलेशन फिर सेलिब्रेशन।
1: तो कैलकुलेशन से पहले फिलहाल के लिए ऋषि सुनते हैं एक म्यूजिक।
0: बिल्कुल,

0: दोस्तों, अभी अभी आपने सुना था फिल्म भाग मिल्खा भाग से ये गीत, जिसे गाया था जावेद बशीर ने, गीत लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: तो वेलकम बैक दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि PMMY।
0: मुद्रा का बेसिक आइडिया क्या है? माइक्रो और स्मॉल बिजनेस को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच आसान बनाना,
1: यानी अगर कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहता है, जैसे दुकान, सर्विस बिजनेस, छोटा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, रिपेयर वर्क, फूड रिलेटेड एक्टिविटी या कोई माइक्रो एंटरप्राइज, तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स के लिए मुद्रा के लिए तहत लोन सपोर्ट उपलब्ध हो सकता है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों इसके अलग अलग कैटेगरी

0: फ्रीज है। शिशु छोटे शुरुआती लोन्स के लिए 50,000 तक, किशोर 50,000 से ऊपर और 5,00,000 तक, तरुण 5,00,000 से ऊपर और 10,00,000 तक, और एलिजिबल रिपीट बोरोस के लिए तरुण प्लस 10,00,000 से 20,00,000 तक।
1: लेकिन यहाँ एक बात फिर याद रखिए, ये फ्री मनी नहीं है, लोन है। इसलिए EMI, इंटरेस्ट, रीपेमेंट कैपेसिटी और बिजनेस कैश फ्लो को समझना बहुत ज़रूरी है।
0: और लोन लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर अगले 6 महीने बिजनेस में मेरी एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आई तो EMI कैसे जाएगी? अगर इसका जवाब नहीं है तो सिर्फ एंथनिज्म में लोन मत लीजिए।
1: एंटरप्रेन्योरशिप में करेज ज़रूरी है, लेकिन कैलकुलेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
0: दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट स्कीम पर, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP।
1: इसका फोकस न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना है, खासकर नॉन फार्म सेक्टर्स में। यानी अगर आप कोई नया माइक्रो एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स के लिए PMEGP के तहत बैंक फाइनेंस और मार्जिन मनी सब्सिडी का फ्रेमवर्क है।
0: और इंटरेस्टिंग बात, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ बड़े शहर का व्यक्ति ही एंटरप्रेन्योर बनेगा।
1: बिल्कुल, छोटे शहरों और रूरल एरियाज के भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। फूड प्रोसेसिंग, रिपेयर सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, लोकल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, सर्विस बिजनेसेस और कई दूसरी एक्टिविटीज में भी।
0: बिल्कुल, PMEGP में सब्सिडी परसेंटेज, कैटेगरी और रूरल अर्बन लोकेशन के हिसाब से बदल सकती है। जनरल कैटेगरी में अर्बन और रूरल रेट्स अलग है, और स्पेशल कैटेगरीज जैसे वुमन और कई अन्य एलिजिबल कैटेगरीज के लिए हायर सब्सिडी रेट्स का प्रोविजन है।
1: लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, सब्सिडी का मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में पूरा पैसा कैश की तरह आ जाएगा। ये क्रेडिट लिंक्ड मार्जिन मनी सब्सिडी स्ट्रक्चर है। बैंक फाइनेंस, बेनिफिशरी कॉन्ट्रीब्यूशन और सब्सिडी, इन सब का अपना फ्रेमवर्क होता है ऋषि।
0: बिल्कुल, इसीलिए स्कीम पढ़िए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और बैंक से प्रॉपर डिस्कशन कीजिए।
1: और हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे गवर्नमेंट लोन सैंक्शन करवा दूंगा, बस पहले मुझे बड़ी रकम दे दो, तो सावधान हो जाइए। गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पर मिडिलमैन और फेक एजेंट से बचना बहुत ज़रूर है। पर एक चीज़ जिसे हम आपको नहीं बचाएंगे वो है बड़े ही अच्छे से गाने, जैसे कि अभी आप सुनने वाले हैं ये बड़ा ही अच्छा सा गाना।

0: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना था फिल्म माय नेम इज खान का ये गीत, जिसे गाया था शफकत अमानत अली ने, जिसे गीत दिया था निरंजन अयंगर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। दोस्तों, अब बात करते हैं वुमन एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि आज बहुत सारी यंग वुमन सिर्फ जॉब नहीं कर रही, वे बिजनेस बिल्ड कर रही है
4: और कई बार घर से होम बेकरी, बुटीक, डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटी सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जैसी कई सारी चीज़ें अपने घर से कर रही होती है।
3: लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, कई वुमन के पास आइडिया होता है, स्किल होती है, मेहनत होती है, लेकिन कैपिटल और फॉर्मल फाइनेंस तक पहुंच मुश्किल होती है।
4: इसीलिए गवर्नमेंट की कई इनिशिएटिव्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करती है। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क में एलिजिबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बैंक फाइनेंस का प्रोविजन रहा है, खासकर ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस के लिए, और बजट 2025 यानी 2025 में फर्स्ट टाइम वुमेन तथा SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़े लोन सपोर्ट वाली नई स्कीम की घोषणा भी की गई थी।
3: बिल्कुल, इसलिए अगर आप वुमन एंटरप्रेन्योर है तो सिर्फ ये मत सोचिए मेरे पास पैसे नहीं है, पहले ये पता कीजिए मेरे बिजनेस के लिए कौन सा फॉर्मल फाइनेंसिंग रूट अवेलेबल है,
4: और अपना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, बिजनेस प्लान, कॉस्टिंग, एक्सपेक्टेड सेल्स, कैश फ्लो आइडेंटिफाई और बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी। जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका प्रपोजल रहेगा उतना ही आपके लिए आपकी बात समझाना आसान होगा। और अब एक छोटी सी बात उन लड़कियों के लिए भी सोची जा सकती है, मैं अकेले

0: कैसे करूंगी?
1: दोस्तों, शुरुआत में कोई भी अकेला ही करता है, टीम बाद में बनती है।
0: तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाइए और सुनते हैं एक शानदार सा गीत।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
2: RBI कहता है,
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
4: दोस्तों, अभी ब्रेक से पहले जो आपने गीत सुना वो था फिल्म क्रूक का, जिसे गाया था मोहित चौहान ने, गीत दिया था कुमार ने और संगीतकार थे प्रीतम। दोस्तों, एक कंफ्यूजन दूर करते हैं, हर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप नहीं होता है।
5: हाँ, अगर आपने अपने शहर में एक दुकान खोली तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी बेस्ड स्केलेबल सॉल्यूशन बनाया, इनोवेटिव मॉडल बनाया और उसे बड़े मार्केट तक ले जाना चाहते हैं तो वह स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है।
4: और यही आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया सिर्फ लोन स्कीम नहीं है, यह एक बॉर्डर इकोसिस्टम है। DPIIT इकोनाइजेशन के जरिए एलिजिबल स्टार्टअप को कई बेनिफिट्स और सपोर्ट मैकेनिज्म एक तक एक्सेस मिल सकता है,
5: जैसे कंप्लायंस में ईज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ऐसे बेनिफिट्स और एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स जैसी सुविधाएं, लेकिन हर बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टार्टअप नहीं बन सकता।
4: एग्जैक्टली अनुष्का, आपने दुकान खोली और बोर्ड लगा दिया XYZ स्टार्टअप PVT.LTD, तो उसे स्टार्टअप इकोसिस्टम

0: सिस्टम में ऑटोमेटिक एंट्री नहीं मिलती है।
1: स्टार्टअप इंडिया के साथ मेंटरशिप, इन्वेस्टर कनेक्ट, सीड फंडिंग इकोसिस्टम और अदर सपोर्ट मैकेनिज्म्स भी जुड़े हैं। और अगर आप जेन्युइनली इनोवेटिव आइडिया पर काम कर रहे हैं तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक सेक्टर की बात करते हैं जिसमें छोटे शहरों और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में बहुत पोटेंशियल है, जो कि है फूड प्रोसेसिंग।
0: बिल्कुल, और यहाँ एक स्कीम का नाम आता है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME।
1: अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस से जुड़े हैं तो इस स्कीम के तहत एलिजिबल यूनिट्स के लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन रहा है। इंडिविजुअल यूनिट्स के लिए एलिजिबल प्रोडक्ट कॉस्ट पर 35% तक क्रेडिट लिंक सब्सिडी मैक्सिमम 10 लाख यानी कि 10 लाख तक का प्रोविजन दिया गया है, सब्जेक्ट टू स्कीम रूल्स ऑब्वियसली।
0: और इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी लोकल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसके प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस को स्ट्रेथन करने की कोशिश।
1: तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट फेमस है तो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए, क्या मैं इसे सिर्फ बेचूं या प्रोसेस करके, पैकेज करके, ब्रांडिंग करके बेचूं?
0: यही डिफरेंस है सेलर और एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग में। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए बिजनेस आइडिया अच्छा है, मार्केट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार है, लेकिन बैंक पूछता है कॉलेट्रियल और आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है।
1: यहाँ अब मैं बताती हूँ कोलैटरल की प्रॉब्लम का सलूशन क्या है ऋषि। यहाँ क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए CGTMSE का ऑब्जेक्टिव एलिजिबल माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कोलैटरल थर्ड पार्टी गारंटी की बाधा कम करते हुए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेस में मदद करना है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स एंड लेंडर अप्रेजल भी है ये सब।
0: बिल्कुल दोस्तों, मतलब गारंटी मैकेनिज्म बैंक के रिस्क को कुछ हद तक एड्रेस करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एप्लीकेंट को लोन ऑटोमेटिकली मिल जाए।
1: एग्जैक्टली, बैंक्स फिर भी बिजनेस विजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, रीपेमेंट कैपेसिटी और अपनी लीडिंग नॉर्म्स देखेगा, इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम है तो भी बिजनेस प्लान मजबूत होना चाहिए। अब हमने बात की मुद्रा की, PMEGP की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट की, स्टार्टअप इंडिया की, PMFME की, क्रेडिट गारंटी की,
0: लेकिन बिजनेस सिर्फ स्कीम से नहीं चलता है, बिजनेस चलता है कस्टमर से, और कस्टमर तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग चाहिए। इसलिए अगले सेगमेंट में बात करेंगे अगर पैसा मिल भी गया तो बिजनेस को चलाए कैसे। उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी जो आप गाना सुन रहे थे वो था फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिसे गाया था सचिन जिगर, राघव, चैतन्य और वरुण जैन ने, जिसे गीत लिखे थे इंद्रनील ने और संगीत दिया था सचिन जिगर ने। दोस्तों, मान लो आपको 5 लाख मिल गए, अब
1: अब असली परीक्षा शुरू।
0: क्योंकि पैसा मिलना बिजनेस का एंड नहीं, बिजनेस की शुरुआत है।
1: और यहाँ 3 नंबर्स याद रखिए, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट। कई नए एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये कैलकुलेट करते हैं, मैं 100 में बना रहा हूँ और 150 में बेचूंगा तो 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बीच में पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, मार्केटिंग है, टैक्स इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रिटर्न्स हो सकते हैं, स्टाफ कॉस्ट हो सकती है।
0: बिल्कुल, तो 50 का द आर्टिफिशियल प्रॉफिट कभी कभी 10 भी नहीं बचता।
1: इसीलिए कॉस्टिंग प्रॉपरली रखना सीखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पर्सनल पैसा और बिजनेस पैसा अलग रखिए। अगर बिजनेस अकाउंट से ही हर दूसरे दिन पर्सनल शॉपिंग होने लगी तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या सिर्फ चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
0: दोस्तों, एक मिसकॉन्सेप्शन और है। हम गवर्नमेंट सपोर्ट सुनते ही सोचते हैं लोन मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट इकोसिस्टम में सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं है।
1: ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन, मार्केट एक्सेस, नेटवर्किंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज और एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस।
0: बिल्कुल अनुष्का, स्टार्टअप इंडिया का इकोसिस्टम ऐसे कई सपोर्ट मैकेनिज्म से जुड़ा है, और स्टार्टअप इंडिया के तेजस इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम्स एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस को डिस्ट्रिक्ट्स, यूथ, वुमन, स्टूडेंट और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स तक ले जाने पर फोकस करते हैं।
1: तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और सोचते हैं एंटरप्रेन्योरशिप तो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में हो सकती है, तो ये सोच बदलने का समय है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज इंटरनेट ने मार्केट की डेफिनेशन बदल दी है। उज्जैन में बैठकर इंदौर में बेच सकते हैं, भोपाल में बेच सकते हैं, दिल्ली में बेच सकते हैं, और सही प्रोडक्ट हो तो इंटरनेशनल कस्टमर

0: तक भी पहुंचा सकते हैं।
1: एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कभी कभी जमीन नहीं, उसकी मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग होती है।
0: चलो दोस्तों, एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप अपने शहर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज घर से निकलकर बस ऑब्जर्व कीजिए, लोग किस चीज़ के लिए दूसरे शहर जाते हैं, किस सर्विस की कमी है, कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव है, किस लोकल प्रोडक्ट की डिमांड है, टूरिस्ट क्या पूछते हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए, वर्किंग लोगों की प्रॉब्लम क्या है।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग, अपने शहर की सबसे कॉमन कंप्लेन सुनिए, क्योंकि कंप्लेन कई बार मार्केट रिसर्च होती है।
0: बिल्कुल, लोग बोलते हैं यहाँ अच्छा है, यहाँ नहीं। एंटरप्रेन्योर सोचता है क्यों ना मैं दूँ, लोग कहते हैं यह सर्विस बहुत एक्सपेंसिव है। एंटरप्रेन्योर सोचता है क्या मैं इसे अफोर्डेबल बना सकता हूँ, लोग कहते हैं यह काम करने में पूरा दिन लग जाता है। एंटरप्रेन्योर सोचता है क्या टेक्नोलॉजी से इसे 1-6 घंटे के में किया जा सकता है।
1: यही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया घूम रहा है, उसे सिर्फ दिमाग में मत रखिए, कागज़ पर लिखिए और उसकी कॉस्टिंग निकालिए। 5 पोटेंशियल कस्टमर से बात कीजिए और फिर छोटा सा पायलट कीजिए।
0: और जब डर लगे तो याद रखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता है, सीखते सीखते एक्सपर्ट बनता है।
1: और इसी थॉट के साथ सुनते हैं अगला गीत।
2: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूँ

0: दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुरमा का ये बेहतरीन गीत, जिसे गाया था दिलजीत दोसांझ ने और गीतकार थे गुलजार, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। दोस्तों, अब पूरे प्रोग्राम की बातों को एक छोटे से फॉर्मूला में डालते हैं।
1: चलो, स्टेप वन, प्रॉब्लम ढूंढो, किसी रियल प्रॉब्लम की शुरुआत करो।
0: स्टेप टू, कस्टमर ढूंढो, कौन खरीदेगा।
1: स्टेप थ्री, प्रोटोटाइप या पायलट बनाओ, पहले छोटा सा वर्जन।
0: स्टेप फोर, कस्टमर फीडबैक लो, क्या पसंद आया, क्या नहीं, कितना पैसे देने को तैयार है।
1: स्टेप फाइव, कॉस्टिंग करो, कितना खर्च, कितना सेल, कितना मार्जिन।
0: स्टेप सिक्स, फंडिंग ऑप्शन देखो, अपनी सेविंग्स, फैमिली कंट्रीब्यूशन, बैंक फाइनेंस, मुद्रा, PMEGP, PMFME, स्टार्टअप इकोसिस्टम और जो भी एप्लीकेबल गवर्नमेंट सपोर्ट हो।
1: और स्टेप सेवन, सेल, क्योंकि बिजनेस प्लान की सबसे अच्छी जगह कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट है। पर फिलहाल जो हमारे हाथ में प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए, वो है बड़ा ही अच्छा सा गाना। तो इन्जॉय कीजिए ये बड़ा ही अच्छा सा गाना।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने सुना था फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था शंकर महादेवन, केरा लियासा मोंटेरो, शफकत अमानत अली ने, जिसके गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।
1: तो दोस्तों, आज हमने बात की एंटरप्रेन्योर बनने की, आइडिया पहचानने की, कस्टमर समझने की, फंडिंग की और गवर्नमेंट सपोर्ट की।
0: हमने जाना कि मुद्रा जैसी स्कीम माइक्रो बिजनेस के लिए क्रेडिट एक्सिस में मदद कर सकती है। पीएम ईजीपी नए माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी फार्म वर्क देता है। वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव और फाइनेंसिंग एवेन्यू अवेलेबल है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप को बॉर्डर इकोसिस्टम सपोर्ट देता है।
1: फूड प्रोसेसिंग के लिए पीएम एफएमई जैसे प्रोग्राम्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म।

मैकेनिज्म्स कोलैटरल की समस्या को कुछ केसेस में आसान बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, स्कीम देखकर बिजनेस मत चुनिए, पहले बिजनेस आइडिया चुनिए, प्रॉब्लम समझिए, कस्टमर समझिए, फिर देखिए।

0: से वेरीफाई कीजिए एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट सब्सिडी इंटरेस्ट रीपेमेंट और एप्लीकेशन विंडो समय के साथ बदल सकते हैं।
1: तो किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बिजनेस मत शुरू कर देना।
0: कंग्रेचुलेशंस, गवर्नमेंट हैज अप्रूव 25 लाख फॉर योर स्टार्टअप, पे 7,999 प्रोसेसिंग फी। ऐसा मैसेज आए तो एंटरप्रेन्योर बनने से पहले डिटेक्टिव बन जाइए।
1: और याद रखिए, आपका पहला बिजनेस छोटा हो सकता है, आपकी पहली दुकान छोटी हो सकती है, पहली सेल सिर्फ 500 की हो सकती है, पहला कस्टमर आपका पड़ोसी हो सकता है, लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी तो वही 500 आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का पहला चैप्टर हो सकता है।
0: क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मुश्किल हिस्सा बिजनेस चलाना नहीं, कई बार पहला कदम उठाना होता है।
1: तो अगर आपके पास आइडिया है उसे लिखिए, अगर स्किल है उसे बेचने का तरीका खोजिए, अगर प्रॉब्लम दिखाई देती है उसका सॉल्यूशन सोचिए।
0: क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो कभी डरता नहीं, एंटरप्रेन्योर वो है जो डर के बावजूद कहता है चलो ट्राई करते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की युववाणी कार्यक्रम को दीजिए अनुमति। आपसे सुनते रहिए आकाशवाणी 102.5 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और अपने आइडियाज को सिर्फ आइडियाज मत दीजिए,
1: उन्हें एक मौका दीजिए, शायद अगला बड़ा बिजनेस आइडिया आपके शहर से ही हो।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवा श्रोता अभी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रही थी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। शाम के 6 बज चुके हैं। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या।

भजन संध्या कार्यक्रम में यह पहला भजन था भक्त द्वारा अपने आराध्य के मधुर स्वरूप का वर्णन करते हुए। स्वर थे लालित्य और साथियों के, ये पारंपरिक भजन था। ईश्वर की मुस्कान मधुर है, स्वरूप मधुर है, पर क्या हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण मधुर रहता है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियाँ आती हैं और इस स्थितियों में कभी हम परेशान होते हैं, कभी कटु अनुभव होते हैं, कभी अनुभव मधुर होते हैं। लेकिन यह तो जीवन ही है ना, जिस विधि से परमात्मा हमें रखना चाहे उस विधि से प्रेम पूर्वक हम रहें, तभी हमारा जीवन सही से चल पाएगा।

जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसका अर्थ लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है कि जीवन के कष्टों के निवारण के लिए हम प्रयास ही ना करें या अपनी उन्नति के लिए कोई कार्य ही ना करें। कार्य भी करने हैं, प्रयास भी करने हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि उन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, ना ही निराश होना है। ध्यान रखें कि ईश्वर प्रतिक्षण हमारे साथ है, हमारी हर सांस में हमारे आराध्य, हमारे इष्ट हैं। सुनवा रहे हैं आपको अगला भजन, पृथ्वी गंधर्व की आवाज़ है।

भगवान तेरी हर सांस में है, तो क्यों ना इस परमेश्वर को महसूस किया जाए, उसके होने की अनुभूति को हृदय तक, मस्तिष्क तक, पूरी आत्मा तक ले जाया जाए। सुनवा रहे हैं अगला भक्ति गीत।

उज्जैन के बाबा महाकाल के स्वरूप की आराधना के बाद अब उज्जैन के युवराज गणपति जी की आराधना भी अत्यंत आवश्यक है, खासकर गणेश जी का आगमन जो होने वाला है। सुनवा रहे हैं आपको ये कार्यक्रम का अंतिम भक्ति गीत।

ये भजन था सूर्या गायत्री के स्वर में। इससे पूर्व जो भजन सुना था अखिल सचदेवा के स्वर में था। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का भजन संध्या कार्यक्रम ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की ये पहली पेशकश थी, लिया था फिल्म लव इन टोक्यो से। मोहम्मद रफी की आवाज़ थी, शंकर जगशन की बनाई धुन में बोल थे हसरत जयपुरी के। सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में अगला गाना, अभिलाषा फिल्म से लिया है, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आर डी बर्मन।

अभिलाषा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था, सुनवा रहे हैं आपको अब एक बार फिर से राहुल देव बर्मन की बनाई धुन। गीतकार हैं आनंद बख्शी, आवाज़ है किशोर कुमार की। फिल्म कटी पतंग का एक गाना है।

प्यार दीवाना होता है और प्यार करने वाला भी दीवाना होता है, और इस दीवाने का नाम वो तो पूछना पड़ेगा। सुनवा रहे हैं आपको एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शंकर जयकिशन की बनाई धुन में बोल है शैलेंद्र की।

गलती अगर हुई है तो मनाना भी होगा, प्यार सच्चा है ये जताना भी होगा। सुनवा रहे हैं आपको राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज में मजरू के लिखे बोल। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

कभी रूट जाता है, कभी मान जाता है, दिल बेचारा है, करे तो करे क्या। सुनवा रहे हैं आपको गुलजार फिल्म का लिखा हुआ, गुलजार का लिखा हुआ फिल्म खुशबू का गाना। आशा भोसले की आवाज़ है, संगीत एक बार फिर राहुल देव बर्मन का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने ये दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडी के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:05 हुए हैं। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरणों ने सबसे पहले जानकारी हमारी इसी सभा के शेष कार्यक्रमों की। शाम 7:21 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात्रि 8 बजे सुनेगा फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती का कार्यक्रम छाया गीत अनुप्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी मुंबई से ही सुनेगा आज की फनकार कार्यक्रम रात्रि 10 बजे और ढलती जाए रात रात्रि 10:30। श्रोताओं, अब जानकारी कल के मुख्य कार्यक्रमों की। कल सुबह 7:20 पर प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम होगा सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर सुनिएगा उज्जैनी आरजे। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। बॉलीवुड बीट्स, नए फिल्मी गानों का ये कार्यक्रम सुनवाएंगे कल सुबह 9:40 पर।

उज्जैन दर्शन इस कार्यक्रम का समय रहेगा कल सुबह 10 बजे और 10:30 पर होगा कार्यक्रम महिला सभा। आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के क्रम में सुबह 11 बजे रंग तरंग, दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल, दिन में 1:05 पर सुरीला सफर, दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे सखी सहेली, दोपहर 3 बजे और शाम 4 बजे करेंगे अनुप्रसारित कार्यक्रम सेहतनामा। शाम 5 बजे युववाणी के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा। भजन संध्या का समय रहेगा रोज ही की तरह शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। आजकल क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का ये प्रसारण आप आकाशवाणी भोपाल से कल शाम 6:40 पर सुनेंगे। आकाशवाणी भोपाल से ही कल शाम 6:45 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार दर्शन और कल शाम 7:21 पर हमारे केंद्र से सुनवाएंगे माटी री बात। कल रात्रि 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से सुनिएगा सुर्खियों में। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से कल रात्रि 8:15 पर सुनवाया जाएगा। कल रात्रि 9:30 पर दिल्ली से रिले करेंगे पब्लिक स्पीक आपकी फरमाइश। आकाशवाणी भोपाल का ये फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कल रात 10 बजे सुनिएगा। आकाशवाणी भोपाल से ही कल रात्रि 10:30 सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी इन जानकारियों के साथ ही संपन्न हुआ कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा।

0: दी, हाँ ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न, पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं के से द्विपक्षीय बैठकें। आगर मालवा से प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की लाडली बहना की 40वीं किस्त जारी। पन्ना में 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन, किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी। और बालाघाट में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के दिए निर्देश, 67 नए मेडिकल ऑफिसर पदस्थ। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज समापन हो गया। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का एक इकोसिस्टम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा विजन और भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ब्रिक्स देशों को अपनी योजना और फैसले को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के तीसरे दशक में प्रवेश के साथ दुनिया अब ठोस नतीजों की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों और उनकी टीमों का आभार जताया और 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी।
1: ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो का यीफ के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और नई तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा हुई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फत्ताह असीसी के साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी साझेदारी पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, रेलवे, शिक्षा, पर्यटन और तकनीक सहित कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा में लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश के 1.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के खातों में 40वीं मासिक सहायता राशि भेजी गई। महिलाओं के खातों में एक क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में करीब 226 करोड़ रुपए की लागत वाले 33 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं करीब 28 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 विकास कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजना के माध्यम से हर महीने बहनों को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है।
2: पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,10,000 से ज्यादा बहनों सबके खाते में पैसे गए। रक्षाबंधन पे एक बार बहन को भाई के हाथ से कुछ मिल जाए, जो मिल जाए वो भी भगवान की दया है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बहनों को हर महीने बिना नागा उनका 1,500 रुपए दे रही।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पन्ना में प्रदेश के 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आज आयोजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों की जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन जैसी गतिविधियों को अपनाकर आय बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना और सिंचाई परियोजनाओं से बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों ने प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, डेयरी और कृषि स्टार्टअप के अपने अनुभव साझा किए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज बालाघाट जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिले में 67 नए मेडिकल ऑफिसरों की पदस्थापना की गई और स्वास्थ्य संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र और 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता, एनडीए सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी के जरिए विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन है और अक्टूबर में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भी पूरे होंगे। वहीं प्रदेश में 17 सितम्बर को उज्जैन के महाकाल महालोक सहित पूरे प्रदेश में 58 लाख आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। भोपाल के सिंधु भवन में आज प्रादेशिक सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सिंधी समाज के अधिकारों, संरक्षण, भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ समाज के मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सिंधी समाज के अधिकारों और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाजन की पीड़ा झेलने के बाद भी सिंधी समाज ने अपने पुरुषार्थ और सेवा भाव से देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। सम्मेलन में समाज की एकता, समस्याओं के समाधान और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। सागर जिले के बंडा में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शिवंजा राजपूत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी घटना के बाद से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रूपये का इनाम घोषित था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कठुआ नाला के जंगल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस का दावा है कि गिरने के बाद आरोपी ने टीम पर 3 राउंड फायर किए, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड फायर किए। इस दौरान गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदेश में कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 16 सितंबर को ई स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों के पात्र विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में पहली कोशिश में कम से कम 70% अंक और अपने स्कूल में प्रथम स्थान रहा हो। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ कल सुबह 10 बजे ध्वजा पूजन और विशेष अनुष्ठान के साथ होगा। उत्सव के पहले दिन भगवान गणेश को 1.25 लाख मोदकों का महाभोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर दिन शाम को 11,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया जाएगा। उत्सव के दौरान भगवान गणेश का स्वर्ण और हीरे के आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा और दर्शन की व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कटनी पुलिस ने फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों से बेचने वाले एक POS एजेंट को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 98 एक्टिवेटेड सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, जबकि तिलक वर्मा उप कप्तान हैं और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला आजाद रुबई में मौजूद चैंपियन श्रीलंका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ लिया है और भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। बड़वानी के सेंधवा में नदी नाले उफान पर हैं, जबकि रलावली का बड़ा तालाब ओवरफ्लो हो गया है। टीकमगढ़ में तेज बारिश के बाद बांसुजारा बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। शाजापुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, धार और महू समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, खरगोन, खंडवा और झाबुआ समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के मुकट रोड थाना पुलिस ने आनंद नगर के एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई कर 3 लोगों को पकड़ा और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया। नर्मदापुरम जिले के डोलरिया तहसील के नानपा और कजलास में 2 नई रेत खदानों घोषित की गई हैं। दोनों खदानों के लिए कुल 30 हेक्टेयर क्षेत्र तय किया गया है। आगरमालवा जिले में लोक अदालत की 10 खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय में लंबित 291 और 237 प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया गया। वहीं मोटर दुर्घटना के 14 मामलों में करीब 60 लाख रुपए का अवार्ड पारित हुआ। शिवपुरी में इस बार 100 से ज्यादा गणेश पंडाल लगाए जा रहे हैं। ये विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। कटनी जिले में हुए जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 160 बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झाबुआ में बिजली चोरी और अनाधिकृत बिजली उपयोग पर रोक लगाने के लिए आम लोगों से सहयोग की अपील की गई। नागरिक बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और हुकिंग जैसी अनियमितताओं की सूचना विभाग को दे सकते हैं। सीहोर जिले में नवे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान हर दिन अलग अलग थीम पर स्थानीय खाद्य पदार्थों से पोषक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न। पीएम मोदी की कई देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें। आगरमालवा से प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाडली बहना की 40वीं किस्त जारी। पन्ना में 28वें बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन। किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी। और बालाघाट में उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के दिए निर्देश। 67 नए मेडिकल ऑफिसर पदस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है? क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन।
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
8: आरबीआई कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से कार्यक्रम मालवी गीता रिंगूंज।

हेलो हाय का साथ, राम राम का साथ, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर है यो तुम्हारो भाई सुमित कुमार। तो सबसे पहला तो यो बताई दो हमारे थम के कैसा हो। अरे मतलब चकाचक तो हो नहीं? देखो चकाचक के रही थम, क्योंकि अभी के मौसम ऐसा चली रहो कि मैं सब तबीयत सबकी तबीयत खराब चली रही है। तो अपना ध्यान रख जाओ, खाने पीने में ध्यान रख जाओ। तो सबसे पहला थम सबको स्वागत है, वंदन है, उसका साथ घनो घनो अभिनंदन भी है। अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी प्रसारण वाला विशेष मालवी गीतारी गुंज कार्यक्रम के एक बार फिर मैं तुम्हारे सबका बीच में लेके आई गयो हूँ। आज रविवार है, ने अपनी तारीख देखा तो आज 13 सितंबर वही गई है। आज दो महत्वपूर्ण दिन है। एक तो है अपना भादवा महीना की बीच वही गई है शुक्ल पक्ष की, जो रामदेव जी की जयंती का रूप में पूजा है। और का बाद दूसरा दिन है जो विशेष महत्व रखे हर कोई का जीवन में, वो है आज ग्रैंड पेरेंट्स डे। मतलब जो अपना जीवन में जो दादा दादी नाना नानी को जो महत्व रहे नी उनको दिन। देखो कोई को भी जीवन हो उनमें जो दादा दादी को महत्व रहे उनकी तो बात ही निराली है। और अपना मालवी में तो एक कहावत भी है कि मूर्ति

ब्याज प्यारो, तो इको संबंध योज है कि जो अपना संतान की जो संतान रहे उससे जो प्रेम रहे उतरो रहे जितरो अपनी संतान ती बिन रहे, और भी खुश नसीब रहे जी के दादा दादी को प्रेम नसीब होए। तो देखो, या तो हुई गई आज का दिन पे बात। अब आज अपन मुख्य रूप से बात करवा रहा हूँ गणेश जी के बारे में, क्योंकि तुम्हारे तो मालूम ही जो है कि कल है गणेश चतुर्थी, और गणेश गणपति बाबा बड़ी धूमधाम से अपना सबका बीच में आवा वाला हाँ, और बिल्कुल 10 दिन तक लगातार अपना बीच में आरती पूजा होएगा ने, खूब धूमधाम से डीजा डीजा बाजेगा ने, अच्छा धूमधाम से त्यौहार मनाएगा। तो उका पहला अपन बात करा अपनी खेती का हाल के बारे में कि कहीं चली रहो अपना खेती का में। तो अभी कहीं है कि सितंबर को महीनो चली रो है और यो कम लगभग आधो हवा जवाड़ो है, और मान्यता यह है कि सितंबर अंत में या फिर अक्टूबर शुरुआत में सोयाबीन फसल पकी के कटी के घरे आई जाए है, क्योंकि फिर गहूँ चना भी तो बुना रहे। तो ऐसा में अभी जो सोयाबीन की स्थिति है वह ऐसी है कि उनमें जो फली उनमें दाना बढ़ी रहा है, दाना भर ही रहा है, कोई की जगह दो फली है, तीन फली दाना में, तीन दाना है फली में, तो ये दाना कोई छोटा है कोई बड़ो है ये भर ही रहा है, फूल उन तो खरी है वे सब सब में दाना ही है। उसके बाद अभी का जो बारिश हुई ही है अपना शहर में उज्जैन में, आज सवेर से बारिश हुई थी, कल रात से बारिश हुई थी, तो यह जो यो पानी जो पड़ी रो है ये अपनी फसल के लाभदायक रहे, क्योंकि अपना कृषि वैज्ञानिक का एक केंद्र ने अपने वैज्ञानिक साहब बोले हैं कि ये जो पानी पड़ियो है इतनी जो दाना बनवा की जो क्षमता है वह और बढ़ी जाए है। तो देखो ऐसी बात तो करता जाएंगे अपन ने करा सही है, पर जैसा कि तुम्हारे मालूम है कि अपन अपना कार्यक्रम के शुरू करवा के साथ मुख्य रूप से मालवी गीत गूंज पे मालवी समाचार सुना, तो आओ आज भी अपना कार्यक्रम में मालवी समाचार की शुरुआत कराऊँ। आओ सुनो प्रस्तुत मालवी समाचार।

नमस्कार समाचार का साथ तुम्हारो भाई सुमित कुमार। सबसे पहला अपन ने बुलेटिन का मुख्य समाचार सुन लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबोधित करियो, उनमें सहयोग के जमीन पर उतरने पर जोर दियो गयो। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त अपनी लाडली बहना उनका खाता में लाखी दी है। उसके बाद प्रदेश का मेधावी विद्यार्थी के 16 सितंबर के प्रदान करी जाएगा ई स्कूटी। अब आओ समाचार विस्तार से सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबोधित करते हुए बोलियो है कि ब्रिक्स सिर्फ देश का समूह नहीं है बल्कि मिलकर समाधान निकालने को एक मंच है। उनने बोलियो है कि पिछला 2 दिन की चर्चा में यो भरोसो और मजबूत हुए है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में तय बात के जमीन पर तक उतारने पर जोर दियो है। उनने बोलियो है कि ब्रिक्स को काम खाली कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहे बल्कि उनको असर आम लोग की जिंदगी पर भी दिखाई दे है। प्रधानमंत्री ने बोलियो है कि ब्रिक्स अपना 3रा दशक में प्रवेश कर रियो है और दुनिया अनि समय ती ठोस नतीजा की उम्मीद कर रही है। सम्मेलन ती अलग हुई के मिस्र और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देश का नेताओं ती 7 द्विपक्षीय बैठक भी करी। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगरमालवा में लाडली बहना योजना का तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से ज़्यादा पात्र महिला के खाता में 40वीं मासिक सहायता राशि भेजी गई। महिला का खाता में एक क्लिक का माध्यम ती 1,835 करोड़ रुपया से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर करी गई है। कार्यक्रम में करीब 226 करोड़ रुपये की लागत वाला 33 विकास कार्यों को भूमि पूजन भी करो गयो है। वहाँ करीब 28 करोड़ रुपये की लागत का 17 विकास कार्यों को लोकार्पण भी हुए है। उसके बाद प्रदेश में कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाला मेधावी छात्र उनके 16 सितंबर के ई स्कूटी दी जाएगा। इकाले भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का तहत सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल का पात्र विद्यार्थी उनका यह सुविधा दी जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए 12वीं में पहली कोशिश में कम से कम 70% अंक और अपना स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और जनसेवा का 25 वर्ष पूरा होने का अवसर पर प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पे 17 सितंबर के उज्जैन का महाकाल महालोक सहित पूरा प्रदेश में 58,00,000 आशीर्वाद का दीप जलाया जाएगा। अना दिन प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन भी है। अन्य अवसर पे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान भी चलाया जाएगा। सरकार को कहना है कि अभियान का दौरान सेवा, जन कल्याण और सुशासन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

उज्जैन में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक का सहायक उपकरण देने का प्रशिक्षण शिविर लगाई जा रही है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडीप योजना का तहत शिविर 15-16 सितंबर के आयोजित होएगा। शिविर सांसद कार्यालय जीडीसी कॉलेज का पीछे सुबह 10 बजे का से शाम 5 बजे तक चलेगा। इनमें पात्र लोग की जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण के लिए जांच और चिन्हांकन किया जाएगा। चिन्हित हितग्राहियों के सहायक उपकरण 17 सितंबर के कालिदास अकादमी में दिया जाएगा। देवास में युवाओं का नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करो गयो। माय भारत का तहत चल जाए विकसित भारत नशा मुक्त भारत अभियान का तहत यह कार्यक्रम हुयो। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं का नशे का नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। झाबुआ में पंचायत उपचुनाव का स्वतंत्र निष्पक्ष और सुचारू तरीका से कराने के लिए सेक्टर अधिकारी का प्रशिक्षण आयोजित करी गयो। प्रशिक्षण में अधिकारी उनका चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारी और प्रक्रिया की जानकारी दी गई। वहां दूसरी तरफ जिला में धतूरिया से माही अप्रोच होता हुआ लाबरिया तक करीब 18 किलोमीटर लंबा मार्ग को निर्माण की मंजूरी मिली गई है। राज्य शासन ने इनका लिए करीब 63 करोड़ रुपये स्वीकृति करी गई है। उसके बाद सागर जिला का बंडा में हुई जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी शिवांजय राजपूत के पुलिस ने मुठभेड़ का बाद गिरफ्तार कर लियो है। पुलिस का मुताबिक आरोपी घटना का बाद थी फरार थो और उन्हीं की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपये को इनाम भी घोषित थो। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन वर्ष 2026-27 के तहत जंगल की पातों की पाठशाला आयोजित करी जा रही है। इनमें बांधवगढ़ में काम कर रहे गाइड का पर्यटकों की बेहतर संवाद और वन्य जीव की जानकारी देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग अलग सत्रों में 2025-25 गाइडों का जंगल और पूरा इको सिस्टम की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण में पक्षी दर्शन, पर्यटकों की बातचीत और बेहतर तरीका से अपनी बात रखने के साथ ग्रूमिंग का गुरु भी सिखाया जा रहा है। तो ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

समाचार का बात अब समय हुई है आज को पहलो मालवी गीत सुनवा को, क्योंकि अपना कार्यक्रम है मालवी गीतारी गूंज। तो आओ सुना अपना गायक करण सिंह जी की आवाज में प्रस्तुत गीत श्री गणपति राखो नी लाज हमारी।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: nmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: तो आओ अब बात करें अपना आज का मुख्य विषय पे। तो देखो, भादवा महीना आए और जो आदो निकली जाए का बात, शहर शहर में, गांव में गणेश उत्सव की रौनक दिखाई देवा लगी जाए है। घर उनमें गणेश जी की स्थापना, पूजा अर्चना, आरती और प्रसाद, पूरा वातावरण भक्ति करी के उल्लास की भरी जाए है। पर मन में एक सवाल भी उठे, गणेश जी की पूजा की परंपरा क्यों, कहाँ थी या रीत कहाँ से जुड़ी हुई है? गणेश जी के प्रथम पुंज क्यों माना जाए और सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा की रीति विकसित कैसे हुई? इन्हीं बात के समझा खातर पौराणिक मान्यता ऐतिहासिक तथ्य का बीच अंतर समझना जरूरी है। देखो, पौराणिक मान्यता कई कहे कि धार्मिक ग्रंथ और पौराणिक मान्यताओं में भगवान गणेश के बुद्धि, विवेक, ज्ञान और मंगल को प्रतीक माने जाए हैं। पौराणिक कथा का अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी की रचना करी है। भगवान शिव और बालक गणेश का बीच हुई कथा उका बात गणेश जी ने हाथी को सिर मिलवा की कथा भारतीय धार्मिक परंपरा में प्रसिद्ध है। हमें पौराणिक कथा का रूप में समझा तो ऐतिहासिक घटना का रूप में नहीं है। एक दूसरी प्रसिद्ध पौराणिक कथा में माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी ने यह संदेश दियो कि माता पिता को महत्व बहुत बड़ो है। तो जो गणेश उत्सव हुए है इमें अपन गणेश जी के बैठाए हैं, गणेश जी की स्थापना करा, गणेश जी की पूजा अर्चना करा हाँ। स्थापना थी विसर्जन तक दिन घर परिवार और मोहल्ला में भक्ति गीत आरती और सांस्कृतिक वातावरण बने रहे है। गणेश जी की पूजा और गणेश जी की चतुर्थी परंपरा का संबंध में कई धार्मिक ग्रंथ और पुराणा में उल्लेख मिले है और इन्हीं का संदर्भ में गंज अपना जो उज्जैन शहर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अलग अलग तरीका थी पर्यावरण के संरक्षण के लिए यानी गणेश उत्सव के जोड़ी रहा है। और इन्हीं संदर्भ में अपन ने बात करी है एक समाज सेवी थी प्रियंका जोशी जी, जिन्होंने बताया कि मिट्टी का गणेश बनाव में अपने पर्यावरण के कितरो फायदो है। तो आओ सुनो पहला ये भेंट वार्ता, उसका बाद बात करेंगे अपन।
3: नमस्कार, मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र में।
4: जी धन्यवाद, नमस्कार।
3: मैम, हमारे श्रोताओं को बताइए, ये जो माटी गणेश, सिद्ध गणेश, ये अभियान क्या है?
4: जी अवश्य, माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान जो है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश शासन की ओर से संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को संरक्षित कर सके, पर्यावरण को शुद्ध कर सके, इसीलिए हर घर में माटी से निर्मित गणेश जी स्थापित हो सके। यह कार्य मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद निरंतर कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित और जल संवर्धन करना।
3: मैम, हमें ये बताइए कि माटी के गणेश की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
4: जी, चूंकि हम देख रहे हैं कि विभिन्न त्योहारों में हमारे देश में, हमारे शहर में पर्यावरण को काफी हानि पहुंच रही है, चाहे किसी भी प्रकार के त्योहार हैं। हम त्योहार तो बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं किंतु उसके पश्चात जो पर्यावरण को क्षति होती है उस बारे में हमने कभी विचार नहीं किया है। गणेश जी हमारे आराध्य हैं और परम पूज्य हैं, इसलिए गणेश उत्सव हमारी आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन इस पर्व में, बड़े बड़े आयोजनों में, बड़े बड़े पंडालों में जो POP होता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों का प्रयोग होता है, जिसको अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन के समय विभिन्न स्थानों पर तालाबों में, नदियों में विसर्जित किया जाता है और यह प्रतिमाएं पूरी तरह से जलमग्न हो नहीं पाती है और जल में घुलनशील भी नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य को, हमारी प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा यही संदेश है, हमारा यही प्रयास है कि हम क्यों ना माटी के गणेश बनाएं, जिससे जब विसर्जन हो तो माटी के गणेश आसानी से जल में घुलनशील हो जाए और पर्यावरण को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचे। इसलिए माटी के गणेश प्रकृति के अनुकूल गणेश बनाने के लिए एक सुंदर और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में संकल्पित है।
3: मैम, अवनीसी संस्था की इसमें क्या भूमिका है?
4: जी, हमारी जो संस्था है अवनी श्री जन कल्याण एवं शिक्षा संस्था, इसके नाम से ही उल्लेख है, अवनी अर्थात धरती। जब हमारी संस्था के नाम में ही धरती का उल्लेख है तो क्यों ना हम अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को बचाने का संदेश दें। इसीलिए हमारी संस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य करना है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयोजन में, मार्गदर्शन में विभिन्न कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में करते हैं, और हम जल गंगा संवर्धन के क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के साथ भी कार्य करते हैं, जिससे अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सके। और इसी क्षेत्र में हमने इस बार यह कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन हमने पिछले 2 वर्षों से लगातार किया है, यह हमारा 3रा वर्ष है, और केवल इसका संदेश यही है कि पर्यावरण को संरक्षण मिले, हमारे माध्यम से लोगों तक, जन जन तक इस अभियान को हम पहुंचा सके कि केवल मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण पाकर अगर पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके तो यह पहल क्यों ना हमारे द्वारा हो, और हमारी आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों हम एक साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए हमने इस अभियान के को नाम ही यह दिया है कि माटी के गणेश सिद्ध गणेश, यानी जो माटी के गणेश जब हमारे हाथों से, हमारी भावनाओं से बनाएंगे तो ये गणेश अवश्य ही सिद्ध होंगे। और यही हमारी संस्था की भूमिका है कि इस बिल्कुल संकल्पित कार्यक्रम को, एक उद्देशित कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचा सके।
2: मैम, इस प्रशिक्षण से समाज को क्या संदेश मिला है?
4: जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है तो बदलाव बड़े बड़े मंचों से नहीं होता है, बदलाव छोटी छोटी आदतों से होता है, और ये आदतें हमें खुद बनानी होंगी। इसलिए हमारी भागीदारी है कि हम जन भागीदारी करके हमारी जो कर्तव्य है उनको निभाए। उसमें सबसे बड़ा कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण। अगर हम आज हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को नहीं बचाएंगे, आने वाले समय में हमारी धरती एक विनाशकारी रूप ले लेगी, जो कि जन जन के लिए, हर जीव के लिए हानिकारक है। और इसीलिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गणेश जी को घर अवश्य लाए, लेकिन बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। यदि परिवारजन और सारे लोग मिट्टी की गणेश प्रतिमा अपनाएंगे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करेंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये एक बड़ी पहल होगी।
2: मैम, एक बात ये बताइए, आपके प्रशिक्षण में किस प्रकार के नवाचार का आपने उपयोग किया है?
4: जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया है, हमने पर्यावरण के क्षेत्र में माटी गणेश निर्माण की कार्यशाला तो अवश्य की, लेकिन यह परिवर्तन हमने दिल से अपनाया है। इसीलिए हमने जब माटी के गणेश की कार्यशाला की तो हमने माटी में जो सीड बॉल होते हैं, छोटे छोटे बीज की गोलियां, उनको भी डाला, जिससे जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो एक पौधे का रूप ले और पर्यावरण को संरक्षित करे। इसके अतिरिक्त जब हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और हम कहीं भी किसी अतिथि से मिलते हैं, किसी सामाजिक व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम इस प्रकार के गणेश जी भेंट करते हैं, ताकि वो अपने घर में भी इस प्रकार के गणेश जी बिठाए और जब उनका विसर्जन करे तो एक पौधे का रूप ले और हमारी प्रकृति का जो निरंतर चलने वाला चक्र है यह चलता रहे।
2: मैम, एक बात ये बताइए, युवाओं और बच्चों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है इस प्रशिक्षण में?
4: युवा हमारे देश का भविष्य है और उन्हीं पे सारी नींव टिकी है, तो उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि परिवर्तन की शुरुआत हमसे होती है, हम यानी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी। इसीलिए हमने इस प्रशिक्षण में हर उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया है, चाहे वह बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे कि सीनियर लोग हों, और हमने यही कोशिश की है कि बच्चों में यह संस्कार हम बचपन से डाल सके कि उन्हें पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक रहना है। क्योंकि बच्चा अगर आज सीखेगा कि हमने मिट्टी के गणेश को निर्मित किया है, मिट्टी के गणेश की स्थापना की है, तो वो भी जब युवा होगा तो इसी प्रकार के आदतों को अपने परिवार में अपनाएंगे। इसी प्रकार युवा पीढ़ी इन आदतों को अपना करके अधिक जागरूकता का इस्तेमाल करके यही संदेश दे सकती है कि युवाओं को भी इस प्रकार के आयोजन में हिस्सा लेना है, क्योंकि गणेश जी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि आस्था, सृजन, प्रकृति का संरक्षण और एक संस्कार भी है। तो और आप जानते ही हैं कि गणेश जी का जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनसे एक किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार की आत्मीयता है, इसीलिए बच्चों और युवाओं की भागीदारी हमने इसमें अवश्य ही सुनिश्चित की है।
2: बिल्कुल मैम। मैम, अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: मैं सभी श्रोताओं से यही आग्रह करूंगी कि इस गणेश उत्सव में एक छोटा सा संकल्प लें, एक छोटा सा परिवर्तन करें, क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होता है, बात बनती है जब हम उन बातों को अपने व्यवहार में उतारें। तो आप यह संकल्प लें कि माटी के गणेश अपनाएंगे, सिद्ध गणेश बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने जल स्रोतों को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ चलेंगे। इसी भावना के साथ हम इस वर्ष पर्यावरण हितेशी बनकर इस गणेश पर्व को मनाएं। गणपति बप्पा मोरिया।

0: तो आइए आप जानते हैं इस कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने वाले उन व्यक्तियों से उनके अनुभव, जिन्होंने इस कार्यशाला में अपने अनुभव साझा करने की कोशिश की है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस अवसर का मौका दिया। मेरा नाम मयूर परमार है। आज हमारी कॉलोनी तिरुपति प्लेटिनम में अवनी श्री जन कल्याण एवं शिक्षा संस्था द्वारा मिट्टी के गणेश जी बनाने की कार्यशाला रखी गई है, जिस कार्यशाला में हमने और मेरे कई मित्रों ने भागीदारी ली है। इस कार्यशाला में मैंने अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं और उन्हें डेकोरेट किया है। मिट्टी के गणेश जी बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह माटी गणेश, सिद्ध गणेश को अपनाएं और अपने हाथों से मिट्टी गणेश जी बनाएं और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
2: नमस्कार, मेरा नाम दीपिका जोशी है और दिनांक 11 सितंबर 2026 को मिट्टी की गणेश प्रतिमा निर्मित करने की जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, उस कार्यशाला में मैंने पार्टिसिपेट किया और यह मेरा बहुत ही अच्छा और अनोखा अनुभव रहा। इसके माध्यम से हमने गणेश जी की प्रतिमा को बनाया और यह जो अनुभव हमने अर्जित किया वह अद्वितीय था। इस कार्यशाला को जो हमने अटेंड की थी यह बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई और इसी के माध्यम से हमने हर घर गणेश, सिद्ध गणेश का नारा दिया। धन्यवाद।
0: तो जैसो कि अपना मैडम ने बताया है कि गणेश जी बैठाना अच्छी बात है, पर प्रकृति का अनुकूल गणेश जी बैठानो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर अपन खुदे जग मान लो पीओपी वगैरह का गणेश जी बैठे के अगर उनमें तालाब में नदी में पर्वत या ऐसा तरता रहे तो अपने एक तो भगवान को भी अपमान होगा और कबात अपना पानी भी दूषित होगा और प्रकृति के भी नुकसान पहुँचेगा। तो कहे गणेश जी बैठाओ पर प्रकृति का अनुकूल। तो आओ आगे बढ़ो, साथ ले चला हमारे मुख्य रूप से दूसरा गीत पे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: देखो, गणेश उत्सव खाली पूजा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, भजन, लोक कला और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां भी हुई है। बच्चाओं के लिए चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, कहानी और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाए हैं। युवा भी आयोजन में सहयोग करे हैं। अनाति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत हुई है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा, मोदक और लाल फूल को विशेष महत्व माना जाए है। लोक मान्यता का अनुसार गणेश जी के मोदक घना प्रिय है। मोदक ने ज्ञान और आनंद को प्रतीक भी माने जाए है। दुर्वा घास गणेश पूजा में चढ़ाई जाए है। अलग अलग क्षेत्र में पूजा की विधि में थोड़ा बहुत अंतर जरूर हो सके है, पर मूल भावना भगवान गणेश प्रति गणेश जी का प्रति श्रद्धा और मंगल कामना की होवे है। गणेश जी ने प्रथम पूज्य किया के पीछे भी एक भाव है। मनुष्य कोई भी काम करे तो काम शुरू करवा का पहला मन शांत और एकाग्र होना जरूरी है। गणेश जी को स्मरण हमें मन में एकाग्र करवा को अवसर देवे है। बुद्धि, विवेक और धैर्य ती काम करवा की प्रेरणा मिले है। एनी दृष्टि ती गणेश पूजा ने खाली धार्मिक परंपरा नहीं मानता हुआ जीवन मूल्य से जुड़ के भी देखे जा सके है। मालवा में त्यौहार को संबंध खाली धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि लोक जीवन भी जुड़े अंतर है। गणेश उत्सव में घर में पकवान बने, प्रसाद बांटी जाए, रिश्तेदार मिलवा आवे और आसपास का लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। शहर में अलग अलग मोहल्ला का लोग एक साथ आयोजन करे है। गांव में भी सामूहिक रूप से गणेश जी की पूजा करवा की परंपरा जगह जगह दिखाई देवा लगी गई है। समय बदलियो है, पर गणेश उत्सव मनाने के तरीकों भी बदली गयो है। आज सजावट में नई तकनीकी रोशनी और अलग अलग रचनात्मक तरीका इस्तेमाल हुए है। सोशल मीडिया पर भी गणेश उत्सव का फोटो और वीडियो साझा किया जाए है, पर आधुनिकता का साथ अपनी मूल संस्कृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के याद रखना भी जरूरी है। उत्सव का उद्देश्य आनंद, श्रद्धा और आपसी सद्भाव बढ़ाना है। गणेश जी की प्रतिमा घर में बैठा तो समय सबसे महत्वपूर्ण बात भावना है। पूजा में दिखावा या प्रतिस्पर्धा से ज्यादा महत्व श्रद्धा, अनुशासन और अच्छा विचार के देवल देना चाहे। गणेश जी बुद्धि और विवेक का देवता माने जाए है। इकाले उनका उत्सव में अपनों भी ज्ञान, संयम, स्वच्छता, सहयोग और सद्भाव ने अपनाना को संकल्प लेना चाहे। तो आओ एका साथ ले चला हमारा अपना कार्यक्रम का आखिरी और एक बेहतरीन सा लोकगीत पे।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: तो देखो, गणेश जी का बारे में तो जितरो बताएं इतरो कम पड़े हैं, क्योंकि गणेश जी का जो कथा है, जो गणेश जी को महत्व है, वो इतरो बड़ो है जो कि अपन एक घंटा दो घंटा में तो ख़त्म कर ही नहीं सकता। हाँ, पर समय को थोड़ो पाबंदी अपना ऊपर, समय को थोड़ा ध्यान रखना पड़े। ठीक है, कहवा को मतलब यो है कि गणेश उत्सव काले गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के लाओ, पूरी धूमधाम से लाओ, पर सावधानी के साथ, क्योंकि अपने यो नहीं भूलना है कि अपनी गणेश उत्सव तो मनाना है पर प्रकृति के बचाना है, अपना प्रकृति का संरक्षण में भी काम करना है, अपने प्रकृति का अनुकूल अपने गणेश जी की स्थापना करनी है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना जैसे ध्वनि प्रदूषण होए। और अभी जगह ऐसा चले कि गणेश जी के लावा टाइम में भी जो कचरों रहे, मतलब जो कागज का टुकड़ा उनके उड़ाए हवा में, देखो इनसे हो ही नहीं, थोड़ी देर की आतिशबाजी है या अपना शहर के गंदों करवा को काम है यो, तो ऐसा काम मत करो। उसकी बजाय दो प्रसाद ज़्यादा बांटी दो, जिससे कोई का पेट में जाएगा और भगवान के भी भोग लगेगा। तो केवा का मतलब यो है कि गणेश उत्सव मनाना है पर अपनी प्रकृति के भी ध्यान रखना है। तो आज अपने अपना मालवी गीतारी गुंज कार्यक्रम में मुख्य रूप से गणेश जी के ऊपर अपन ने अच्छी खासी बात करी, उनका बात अपन ने आज जानकारी ली कि आज विश्व ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो इसमें दादा दादी को अपना जीवन में कई महत्व रहे उनकी भी बात करी अपन ने, उनका साथ मालवी गीत भी सुने। हाँ, तो महारा हिसाब से हमारे यानी कार्यक्रम में मेरी सब जानकारी अच्छी लगी होगा, उनका साथ कार्यक्रम भी अच्छा लगे होगा। तो मारे ऐसा लगी रहो कि आज कल इतो, क्योंकि कल फिर आएंगे तुम्हारे सबका बीच में नया नया जानकारी लेने, नया नया विषय लेंगे। जहाँ तक हम बनिया रहो आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पे, उसका साथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पे। और आज कल दो

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, राजेश रोशन के संगीत में। ये फिल्म कामचोर का गीत था। इंदिवर ने लिखे थे इस गीत के बोल, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। सजना शब्द से यूं ध्यान आ गया कि एक ही शब्द के कितने अलग अलग मतलब भी निकल सकते हैं। सजना यानी सजन वाले सजना, और सजना यानी सजना सवरना भी हो सकता है। सुनवा रहे हैं आपको गीत, सौदागर फिल्म से लिया है। आशा भोसले गायिका हैं, गीतकार रविंद्र जैन और संगीत भी रविंद्र जैन का।

और अपनी सजनी को सजा हुआ देखकर सजना भी खुश हो गए। शब्द एक, अर्थ कई। ऐसा एक शब्द है ना, जिया। जिया भी यानी कि जीना, और जिया मतलब हृदय या मन। सुनवा रहे हैं आपको घर फिल्म का गाना। गायिका है लता मंगेशकर, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ रहे हैं नदिया के पार फिल्म के गाने के साथ। रविंद्र जैन का गीत संगीत है, आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की।

नदिया के पार फिल्म के गाने के बाद सुनवा रहे हैं अब आपको ये अगला गाना। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, संगीत है राम लक्ष्मण का और गीत के बोल लिखे असद भोपाली ने।

गीतकार संगीतकार, फिल्म का नाम तो बता ही दिया था और आवाज़ भी आपने ज़रूर ही पहचान ली होगी, गायिका लता मंगेशकर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में आपको। अब अगला गाना, गायक कलाकार हैं आशा भोसले और कुमार सानू, गीत के बोल समीर के लिखे हुए और तर्ज नदीम श्रवण की, फिल्म का नाम बलमा।

जिंदगी की डोर किसी के साथ बांधना तय कर ही लिया है तो लाजमी हो जाता है कि सच्चाई भी जान ली जाए, पूछ लिया जाए कि प्यार तो बहुत जताते हो, निभाओगे या नहीं। सुनवा रहे हैं ऐसा ही गीत, आदमी खिलौना है, इस फिल्म से लिया है। समीर के लिखे बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का और आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की।

आदमी खिलौना है फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है FM 102.5 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति

0: और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई परिवर्तन किए हैं।
7: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई

0: स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ

0: अमी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखी। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत इख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। हॉकी में भारत की मर्दों और ख्वातीन की टीमों ने चीन के शहर मुखी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं और क्रिकेट में ख्वातीन के T20 एशिया कप में दुबई में भारत और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच जारी है। उधर नई दिल्ली में 3 मैचों की मर्दों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात को उजागर करने के साथ इख्तिताम पजीर हुई कि ब्रिक्स के तनवों की बुनियाद पर इसकी शनाख्त, तआवुन और तहरीक बरकरार रहेगी और इसकी तरक्की से इंसानियत के मकसद को तआवुन हासिल होता रहे। दो रोजा सरबराह मीटिंग के आज आखिरी दिन अपने अख्तितामी कलमात में वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स महज कोई मुल्कों का एक ग्रुप नहीं है बल्कि ये मामलात के हल का एक इको निजाम है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन में जो मुजाकरात हुए उनसे इस मकसद को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: सरबराह मीटिंग में मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिये से एक मुश्तरका तसव्वुर और मुस्तकबिल के तआवुन के लिए एक वाज़ह सिमत फराहम होगी। उन्होंने इस जरूरत पर भी जोर दिया कि तमाम फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए जिससे तमाम तर लोगों को फायदा हासिल हो।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: इससे पहले वजीर आजम मोदी ने अपने इफ्तिताही कलमात में कहा था कि ब्रिक्स ग्रुप में मजबूती में इजाफा करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है क्योंकि वबाई बीमारियों, आबो हवा से मुतल्लिक कुदरती आफात और सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से इस बात का अंदाजा हुआ कि आज की बाहम मरबूत दुनिया में कोई बहरान महज एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: इस दो रोजा सरबराह मीटिंग में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई और 50 से ज्यादा हिकमत अमली हैसियत के फैसले किए गए। सरबराह मीटिंग में बड़े आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई जिनमें आलमी हुक्मरानी में इसलाह, बैन अलाक्वामी तिजारत, दहशतगर्दी, अमनो सलामती, मसनू जहानत, आबो हवा में तब्दीली, हिफ्जान सेहत और पायदार तरक्की के मौजूद शामिल हैं। रहनुमाओं ने वबाई बीमारियों के तनाजुर में तैयारी के मैदान में एक मजबूत तर तआवुन और मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले से खबरदारी के एक मजबूत निज़ाम की हिमायत की। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल इख्तियार करने, मुज़ाकरात व जमहूरियत की हिमायत की और शहरियों व शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया। रहनुमाओं ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की और इसके तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई अपने अहद का इजहार किया। उम्मीद है कि नई दिल्ली में एलामिये से इकतसादी तरक्की, टेक्नोलॉजी, हिफ्जान सेहत, आबो हवा में तब्दीली और आलमी हुक्मरानी के मैदान में ब्रिक्स के तआवुन को फरोग देने का रास्ता हमवार होगा। नीज आलमी जुनूब की आवाज़ को तकवीत मिलेगी। ये सरबराह मीटिंग आलमी सियासत, मईशत और कसीर मुल्की तआवुन के तनाजुर में इंतहाई अहम रही। मगरबी एशिया में सूरत हाल और बैन अलाक्वामी अमन व सलामती से मुतालिक मामलात पर बातचीत की वजह से ये वाज़ह हो गया है कि ब्रिक्स अब मजीद महज इकतसादी तआवुन का कोई प्लेटफार्म नहीं है बल्कि ये आलमी सियासी तनाजुर में इसके रोल की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। न्यूज़ डेस्क से अंकित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से अलग आला सतह की बहुत सी दो तरफा सरगर्मियां अंजाम दी। पिछले तीन दिन में जनाब मोदी ने सरबराहान मुमलकत हुकूमत के साथ 15 मीटिंग्स का इनेकाद किया। इसके अलावा उन्होंने बैन अलाक्वामी इदारों के आलमी रहनुमाओं और सरबराहान के साथ भी बहुत सी मीटिंगें की। इन मीटिंग्स से दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, बाहमी मफाद के मामलात पर बात

बातचीत करने और इलाकाई और आलमी तरक्यात पर तबादला ख्याल करने का एक मौका फराहम हुआ। वज़ीर आज़म मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिपीन, जनूबी अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने कजाकिस्तान के कासिम जमरत तुर्गेव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासत, तिजारत, दिफा और सलामती, कनेक्टिविटी, तवानाई, अहम मादनियात, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, तख्लीकी मईशत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बहुत से मैदानों में तआवुन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी के साथ भी एक मीटिंग का इनेकाद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मामलात, खासतौर पर इलाकाई तरक्यात और भारत मिस्र शराकत दारी पर बातचीत की। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक बहुत से शोबों में अपनी शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने का अमल जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने फिलीपींस के सदर फेडिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कुदरती आफात की सूरत में मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद में शामिल होने के फिलीपींस के फैसले का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा के साथ अपनी मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने भारत जनूबी अफ्रीका अहम शराकत दारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लिया, जिसमें भारत SSCU तिजारती समझौता, कानकनी और अहम मादनियात, बुनियादी ढांचा, खुराक की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और हुनरमंदी शामिल हैं। बुरुंडी के सदर इवारिस्ते एनदीए शीमे के साथ अपनी मुलाकात में जनाब मोदी ने अफ्रीकी यूनियन की सदर नशीनी इख्तियार करने पर बुरुंडी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने नाइजीरिया के नायब सदर काशिम सिटेमा से भी मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और भारत और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तआवुन को मजीद आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर उज्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर इक्तसादियात और मालियात जमशेद कुचकरोस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों फरीकों ने दो तरफा इकतसादी और मालियाती तआवुन को मजबूत बनाने पर बातचीत की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने आज कहा है कि नई दिल्ली अलामिया में रवायती, तकमीली और लाजमी दवाओं TCIM की निशानदेही रवायती दवाओं के शोबे में आलमी तआवुन को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने एक बयान में खासतौर पर कहा है कि ब्रिक्स सेहत ट्रैक के तहत TCIM से मुतालिक ब्रिक्स का माहरीन का मुजवजा वर्किंग ग्रुप रुकन मुल्कों को एक बामानी प्लेटफार्म फराहम करेगा, जिस पर एक दूसरे को मालूमात फराहम की जा सकेगी और तहकीक और शवाहद पर मबनी जदीद तरीन नजरियात को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। दाखिली उमूर और बाहमी और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज भारत की जवाहरात और जेवरात की सना से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि लैब में तैयार किए गए हीरों का पूरा इको निज़ाम और मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला भारत के ही हाथों में पुख्तगी से बरकरार रहे। मुंबई में जवाहरात और जेवरात के 52वें अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की वजह से अब इसकी तजारत में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि लैब में तैयार किए गए हीरों की मार्केट उम्मीद है कि अपनी गुंजाइश के एतबार से मौजूदा मार्केट का तकरीब 50 गुना हो जाएगी। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत के पास बुनियादी ढांचा, सलाहियतें, एहसास है और कारोबारी जज्बा और सलाहियत मौजूद है, जो इस मौके से फायदा उठाने के लिए दरकार है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि विज्ञान केंद्रों और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसानों से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के मसाइल के हल के लिए काबिले एतमाद मराकज में तब्दील करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि किसानों को दुरुस्त साइंसी मशवरे मिलें और उन्हें मकामी सतह पर नई टेक्नोलॉजीज तक रसाई हासिल हो। भारत गुजरात के शहर गांधीनगर में सर्कुलर मईशत के फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। फोरम का इनेकाद इस महीने की 15 से 18 तारीख तक किया जाएगा। फोरम का मौजू है सर्कुलर मईशत, अवाम और खुशहाली के लिए तब्दीली। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ मंगल को मुश्तरका तौर पर इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। बिहार के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयां जंगी पैमाने पर जारी हैं। बिहार में 15 जिला में 48 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
अब तक 1251 इज्तमाई किचन के जरिए 88 लाख से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है।

0: इमदादी कैंपों में 12,000 से ज्यादा अफराद को खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के वजीर रतन सदा ने बताया कि सैलाब से मुतासर हर खानदान को 7,000 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। तकरीबन 3,68,000 पॉलीथीन शीट्स, 65,400 खुश्क राशन के पैकेट्स और 1,400 तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में 1,688 कश्तियां काम कर रही हैं। मवेशियों के चारे की 12,844 क्विंटल से ज्यादा मकदार भी फराहम की गई है। इमदादी और बचाव की कार्रवाइयों में SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें मसरूफ अमल हैं। नदियों की सतह पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुल्तानगंज में गंगा नदी की आबी सतह कम हो रही है। कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन, बागमती और घाघरा नदियां कई मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना से निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात में कल इंतहाई शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी कल तेज बारिश का इम्कान है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया में खराब मौसम के सबब आज जावा समुद्र में एक जहाज के उलट जाने से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें 240 अफराद सवार थे। तकरीबन 130 मुसाफिर और अमले के अरकान अब भी लापता हैं। बचाव के काम में मसरूफ इंडोनेशियाई अहलकार ने बताया कि अब तक 107 अफराद को बचाया जा चुका है। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त हुई है जब यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने बहीरे अहमर के साहिली इलाकों में हौसियों की हालिया पेशकदमी को एक तशवीशनाक और तकलीफ देह सूरत हाल से ताबीर किया है। हॉकी में मर्दों और ख्वातीन की भारतीय टीमों ने आज चीन के मोकी शहर में जूनियर एशिया कप के खिताब जीत लिए हैं। मर्दों की भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में आज जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर अपने खिताब का दिफा किया। इस जीत के साथ मर्दों की भारतीय टीम टूर्नामेंट की तारीख में लगातार 4 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल टीम 2015, 2023 और 2024 में भी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत चुकी है। भारतीय खातून टीम ने भी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। टीम ने फाइनल मुकाबले में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से मैच का वाहिद गोल साइका चंद्रकांत माने 17वें मिनट में किया। खवातीन की क्रिकेट में दुबई में जारी खवातीन T20 एशिया कप के फाइनल में भारत ने दफाई चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ अब से कुछ देर पहले तक 18 ओवर्स में 3 गेंद पर 3 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। इससे कबल भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं श्रीलंका भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त देने से पहले अपने तीनों ग्रुप में जीतकर फाइनल में पहुंची है। मर्दों की क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में अफगानिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 157 रन का निशाना रखा है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। इससे कबल भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जगह तजुर्बाकार संजू सैमसन को तरजीह दी है, जबकि चोट के बायस जसप्रीत बुमराह ने टीम में वापसी की है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स मामलात के हल फराहम करने का एक ही को निजाम है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नई दिल्ली ऐलानिया के सभी फैसलों पर मुकर्रा वक्त के अंदर अमल दरामद किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें की। इसके साथ उन्होंने सरबराह मीटिंग से अलग बैन-उल-अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी अपनी सरगर्मियां जारी रखीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत का मकसद लैब में तैयार किए गए हीरे जवाहरात के शोबे में एक आलमी रहनुमा की हैसियत अख्तियार करना है। जावा समंदर में इंडोनेशिया का एक छोटा जहाज उलट जाने के हादसे में 6 अफराद हलाक और तकरीबन 130 लापता हो गए हैं। और हॉकी में भारत की मर्दों और खवातीन की टीमों ने चीन के शहर मोकी में जूनियर एशिया कप के खिताब हासिल किए हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। आज हमारी फनकार हैं अभिनेत्री महिमा चौधरी।

0: ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतुस थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है एंड आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।
2: जी

0: देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिंग को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हु त्यो त्यही दार्जिलिङ मा सिकेको। अन्त हाम्रो नेपाली भाई बहन को बटै सिकेको। अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोख और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

0: नेहा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा।
1: राम हो।
0: फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था जहां पिया वहां में। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओं, ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिपर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल दौर।

अफसोस के नगमे, उदास नगमे, क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

छाया गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दुल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन
2: चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ढलती जाए रात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और

0: कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing